0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल। मैं हूं गगन आपके साथ। आज एक खास विषय है जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। इस विषय को आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक टीचर, एक गुरु जिसको हम उस्ताद भी कहते हैं, वो हमारी जिंदगी में रोशनी का काम करते हैं। वो हमें उस राह पर लेकर जाते हैं जिस राह की जो मंजिल है बड़ी ही खूबसूरत है। और कहा भी जाता है कि गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा है। गुरु का ज्ञान हमें जीवन में सफलता दिलाता है और कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। जी हाँ, आज ऐसी शख्सियत से हम मिल रहे हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी बड़ा दखल रखते हैं। और ये सारी तमाम बातें आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ रही हैं। आप हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धरजी। तो सर, सुरोश राधा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: कैसे सर आप?
1: बहुत अच्छे, ठीक ठाक, प्रभु की कृपा से सब ठीक है।
0: वेरी गुड सर। उसी ईश्वर से, परमात्मा से मैं यही कामना करता हूँ कि हम सब निरोग रहें। कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। इसी प्रकार से कई सारे सात आई थिंक सुख बताए गए हैं और यही सारी बातें मैं आपसे जरूर जानूंगा। तो सर, मैं जो देख रहा था, पढ़ रहा था आपके विषय में, मैं देख पाया कि 38 साल का अनुभव है आपका इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं आपसे इस सफर के बारे में जानना चाहता हूं कि इस सफर को आप कैसे देखते हैं। सुहाना सफर रहा, इस सफर में बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, क्या कहना चाहते हैं?
1: सफर तो सुहाना ही रहा। ये मेरा जीवन से सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आना है और टीचर बनना है
0: जी।
1: तो ये मेरा सेकंड या थर्ड बेस्ट ऑप्शन नहीं था, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन था जिंदगी में। क्योंकि और वो भी बचपन से, जब मैं सैनिक स्कूल गया था, क्योंकि शिक्षा मेरी सैनिक स्कूल में हुई है, तो मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना था। मैंने अपना NDA भी क्लियर किया था, UPSC एग्जामिनेशन, फिर SSB के लिए गया। तो जीवन की दिशा पहले से ही निर्धारित थी, इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रभु को भी पता था और मुझे भी पता था कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो शिक्षा ही है
0: जी।
1: तो इसलिए उसके बाद जब मैं कॉमर्स कॉलेज गया तो आई वाज अ टॉपर इन द यूनिवर्सिटी, मगर उसके बावजूद, हालांकि मैं BCOM स्टूडेंट था, तो हो सकता था कि मैं कहीं और निकल जाता, किसी और व्यवसाय में या किसी और प्रोफेशन में चला जाता। और ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज भी आई, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब मिली, अलग अलग ऑप्शन एक कंपनीज में मिली। तो मगर मेरा क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड था कि शिक्षा में ही आना है, तो इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही आया। और मैंने जीवन भर इसको बहुत एंजॉय किया, क्योंकि शिक्षा से बढ़ के कोई चीज नहीं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और शायद यही एक वजह है, मेरे मथुरा में कहा जाता है कि गुरुजी दंडौत, गुरुजी पाए लागे। अक्सर हमने देखा है कि लोग चरण स्पर्श के अलावा दंडौत, यानी कि वो दंडवत भी करते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाता है, एक राह दिखाता है और एक अच्छा इंसान हमें बनाता है।
1: बिल्कुल, जो दंडवत प्रणाम है
0: जी,
1: में एक रहस्य छुपा हुआ।
0: प्लीज प्लीज बताइए सर।
1: जो जी बहुत बड़ा रहस्य है, जब आप दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत मतलब एक स्टिक की तरह आप फ्लैट होके गिरते हैं। के चरणों में गिरते हैं। जो चरण होते हैं, जो हमारे पांव होते हैं, वो बेस्ट ट्रांसमीटर ऑफ एनर्जी।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसी बात पर मैं भी आऊंगा सर जी। जी
1: आपके जो बाल होते हैं सिर के, वो बेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एनर्जी होता है।
0: क्या बात।
1: जब आप गुरु के चरणों में अपना सिर रखते हैं तो आप गुरु अपनी जो चैतन्य
0: ऊर्जा
1: है, उसको आपकी तरफ
0: ट्रांसफर कर रहे
1: करते हैं, आपको देते हैं, और आपकी उसमें जो आध्यात्मिक यात्रा है सुगम करते।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आपने एक उत्तर दिया। मैं समझता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं इस बात को जानेंगे, समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि सर मैं भी इसी बात पर आऊंगा।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हैं जिम्स वसंत कुंज के, आप डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रवि केधर सर। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जो बातों का सिलसिला आपने शुरू किया उसमें मुझे एक बात याद आ गई थी, मैंने बात रखी आपके सामने, चूंकि मीडिया पर्सन होने के नाते जो हम आप लोगों से सीख रहे हैं, क्योंकि

0: कि आप भी मीडिया स्टूडेंट्स को बनाते हैं, उनको बहुत कुछ सिखाते हैं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, हम समाज में ये देखते हैं कि चरण स्पर्श की जो कला है, जो खूबसूरती है, वो कम हो गई है। लोग घुटना स्पर्श कर रहे होते हैं। जी,
1: उसका जो कारण है, एक तो ये तो एक घटना है, एक इंस्टेंस है जिसके जो दर्शाता है कि किस प्रकार से हम अपनी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उससे हम कितने कट गए हैं। एक्चुअली जो जब हम कल्पना करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं अपनी जो संस्कृति को, जो इसमें प्रिजर्व्ड है हमारे हिंदू धर्म में, जिसको हम फॉलो करते हैं, इससे हम बिल्कुल कट चुके हैं। हम जरूर अपना गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम कहते भी हैं गर्व से को हम हिंदू, मगर धर्म का जो आधार है वो है सनातन धर्म।
0: क्या बात।
1: और जो सनातन धर्म है वो किसी मजहब से जुड़ा नहीं है, किसी पंथ से नहीं जुड़ा है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, मतलब क्योंकि हम बिल्कुल कट चुके हैं अपनी विरासत से, इसलिए हमको बेसिक्स भी नहीं पता।
0: बहुत खूबसूरत।
1: हम अपने जो रिलीजन होता है, या जिसको हम पंथ कहा करते थे, और पंथ जो होता है वो सांस्कृतिक और व्यावहारिक होता है।
0: क्या बात।
1: और व्यावहारिक और सांस्कृतिक जो है वो तो दिखता है। वो दिखने में किस प्रकार से हम क्रियान्वयन करते हैं अपनी सोच का और अपनी विचारधारा का।
0: जी।
1: जो विचारधारा और सोच है इसके पीछे जो छुपी है हुई है वो सनातन धर्म है। और जो सनातन धर्म है उसको हमें इससे अलग रखना चाहिए। जब हम हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू पंथ है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे मतभेद भी हुए हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई सिख है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है। मगर जब हम इनकी, इवन हम जब गुरबानी में जाते हैं तो वहाँ पे क्लियरली गुरु नानक देव जी कहते हैं, मने मग न चले पंथ, मने धर्म सेती संबंध। सो जब गुरु नानक देव जी पंथ की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो एक एनलाइटेंड माइंड होता है, जो
0: प्रकाशमान
1: शक्ति से जागृत अवस्था में जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो किसी भी पंथ के निर्धारित जो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं होता। तो फिर वो बाउंड किससे होता है? अगर वो कहते हैं कि बाउंड वो सिर्फ धर्म के बंधन से होते हैं।
0: जी।
1: तो क्लियरली गुरु नानक देव जी भी यहाँ पे अंतर लाते हैं पंथ और धर्म के बीच में, क्योंकि सनातन का मतलब इटर्नल, धर्म हो गया प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस, हार्मनी, लव, कंपैशन, ये है प्रिंसिपल्स। और ये कुदरत में, प्रकृति में,
0: जी,
1: ये एम्बेडेड है,
0: विद्यमान है।
1: इसी हमारे ऋषि मुनियों ने इसको पहचाना कि इसमें प्रकृति में क्या क्या नियम है, जैसे साइंस ने ढूंढे,
0: जी,
1: तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी ढूंढे, और इसी को यूज करके, इन्हीं के आधार पे उन्होंने अपने अंदर वो सब आयाम ढूंढे जो कि विजिबल नहीं है, दिखते नहीं है, और इस प्रकार से उन्होंने फिर कहा अहम ब्रह्म अस्मि। तो ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक प्रिंसिपल है, ये विचारधारा है, एक विजन है। और ये विजन किसी की भी संपत्ति, किसी वर्ग की संपत्ति नहीं है।
0: नहीं,
1: ये कट अक्रॉस करता है सब रिलीजियस कैटेगरीज को। और अगर हम सनातन धर्म को समझ लें, जो हमारा मूल है, आधार है, तो इस देश में कभी भी कम्युनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे।
0: बहुत अच्छा।
1: सब लोग समन्वय में रहेंगे। यहाँ तक कि अगर आप इस्लाम में भी जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में भी जाएंगे, क्योंकि मैंने क्रिश्चियनिटी का भी अध्ययन किया है, तो वहाँ पे भी आप यही मूल सिद्धांत आपको मिलेंगे।
0: जी।
1: तो अंतर कहाँ है? अंतर रिलीजन के लेवल पे है, ना कि सिद्धांतों के लेवल पे। जो मूल सिद्धांत है
0: वो सबके एक है। जी।
1: वो सबके एक है, मगर अभिव्यक्ति अनेक है। और क्योंकि हम उससे कट गए हैं, तो दंडवत प्रणाम क्या, हम सब कुछ भूल चुके हैं।
0: सब कुछ भूल चुके हैं, सब कुछ।
1: हमारे वेदों में क्या कुछ नहीं है, हमारे वेद जो है उनमें इतना ज्ञान है, मगर आप किसी से भी पूछिए, न वेद का पता है, न उपनिषद का पता है, इवन भागवतम का किसी को नहीं पता है। भागवतम में क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान की सरिता उसमें बह रही है
0: जी।
1: उससे भी वंचित है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से एक लिप सर्विस कर रहे हैं, हम कर्म कांड में रिचुअल में फंस गए हैं, और भागवतम इज हाईली क्रिटिकल ऑफ रिचुअलिज्म। हम उसी को धर्म समझ बैठे हैं।
0: ठीक है,
1: ये हमारी अवस्था, उसका कारण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति जो है वो अंग्रेजों ने आके बिगाड़ दी। उन्होंने हमें इस ज्ञान से वंचित कर दिया, ये कह के कि संस्कृत जो है कर्मकांड की भाषा है, आप पंडित बन जाओगे, आप रिलीजियस हो जाओगे, आप प्रोग्रेसिव नहीं रहोगे, सुपरस्टिशियस बन जाओगे। तो ये तो रिलीजन के साथ एसोसिएटेड चीजें थी, सनातन धर्म के साथ नहीं है एसोसिएटेड। सनातन धर्म तो अपने में एक साइंस है,
0: बहुत
1: तो उन सब, और संस्कृत हमने छोड़ दी, तो इसलिए हमको पता ही नहीं है कुछ। हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, हमारे यहाँ कवि किसको कहा जाता था? कवि सीयर पोएट होता था, जो देख सकता है। इसलिए हम फिलॉसफी वर्ड नहीं यूज करते, हम दर्शन वर्ड यूज करते,
0: दार्शनिक।
1: दर्शन का अर्थ होता है देखना,
0: देखना
1: मतलब देख के हम सत्य की अभिव्यक्ति करते थे। हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन, थ्योरी बनाएंगे, थ्योरी को फिर टेस्ट करेंगे। हम देखते थे, देखने के आधार पे हम प्रत्यक्ष देख के फिर हम कहते थे ये सत्य है। जिस प्रकार हम आंखों से देखते थे, हम वो अपने मन की आंखों से, अंदर जो चैतन्य शक्ति से, चेतना से हम अनुभूति करते थे, फिर सत्य की व्याख्या करते।
0: बहुत खूबसूरत, ठीक है सर।
1: ये सब चीजें हम वंचित हो गए, हमारी शिक्षा पद्धति गिर गई।
0: जी जी, ये सोचना पड़ेगा हम सबको लिसनर्स कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और दिशा अगर हमारी गड़बड़ हुई तो नो डाउट कि हमारी दशा बिगड़ जाएगी। एक छोटा सा विषय मैंने उठाया, उस पर सर ने जो व्याख्या की, बहुत खूबसूरत व्याख्या की है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने जिक्र किया वेद उपनिषद के बारे में, अच्छी बात है अगर आपको पता है, नहीं पता तो प्लीज उनके बारे में जानिए। लेकिन मैं एक और बात रखना चाहूंगा सर इसके विषय में, मैं आपसे ब्रेक के बाद जरूर जानूंगा, कि दूसरों का सम्मान करो, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार से बोलो, स्कूल कॉलेजेस के बाहर हम देखते हैं, तो ये प्यार किस रूप में है, किस दिशा में है? वहीं स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि शायद ये आम भाषा है, यही हमारी भाषा है, लेकिन वो इस बात को शायद ध्यान रखते हैं कि मुझे अपने मम्मी पापा या भाई बहनों के सामने नहीं बोलना है। लेकिन जब कोई दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर भी पास से गुजर रहा होता है, वो अदब भी कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं। तो अगर यही हालत रहे तो जिस तरीके से विश्व गुरु की हम बात करते हैं, तो शायद कहीं हम पिछड़ ना जाएं, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है और इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। और इसी पर बात करने के लिए यूं समझ लीजिए कि आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि केधर जी, जो कि 38 साल का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव है। आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुछ दिल्ली में। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन, आपके साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप हैं डायरेक्टर जिम्स वसंत कुंज दिल्ली से, प्रोफेसर डॉक्टर रवि केदार जी, जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें बता रहे हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बातों का सिलसिला है यूं ही चलता रहे, लेकिन समय सीमा का मुझे ख्याल रखते हुए मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो मैंने आपसे बात रखी थी ब्रेक पर जाने से पहले, आपने बहुत गहराई वाली बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है इस तरह की बातें को सुनने में, समझने में, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक विकास हो रहा होता है। लोग किस दिशा में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स किस दिशा में जा रहे हैं, चूंकि आप एक विद्यालय में हैं, एक विश्वविद्यालय में हैं, एक इंस्टीट्यूशन में हैं, हम भी शारदा विश्वविद्यालय में हैं, ये कल्चर हम देख रहे हैं। तो सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि यूथ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या तो वो सोशल मीडिया के जरिए समझ पाता है या समझ नहीं पाता है, और एक नशा जो है वो नशा स्मोकिंग है, नशा जबकि पढ़ाई का हो सकता था, नशा सिर्फ प्यार का हो सकता था, नशा अदब का हो सकता था, तो ये जो कल्चर चेंज हुआ है इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, और कैसे वो अपने व्यक्तित्व में शिक्षा के माध्यम से निखार ला सकते हैं?
1: इसमें सबसे पहले तो जो इसका मूल कारण ये है कि बच्चे को ना घर पे कोई संस्कार दे रहा है, ना कॉलेज में दे रहा है।
0: जी,
1: कॉलेज में हमारी फंक्शनल एजुकेशन हो गई, क्योंकि मैकॉले ने यही सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया, उनको लेबर चाहिए थी, उनको बाबू चाहिए थे, और अभी तक हम उसी शिक्षा पद्धति को चला रहे हैं। तो यहाँ पे सांस्कृतिक और फिलोसॉफिकल एजुकेशन इंसान को नहीं हम बनाते, हम एक रिसोर्स को बनाते हैं। मैनेजमेंट में हम इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, हमने ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन रिसोर्स बना दिया है। तो इसलिए उसको सिर्फ फंक्शनल स्किल्स क्या होनी चाहिए, कैसे नौकरी पैसे कमाएगा, कैसे जिएगा, तो ये हमारा सारा जो घूम रहा है चक्कर, वो एक ही धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो है कि किस तरह से आप अपना सर्वाइवल एंश्योर करोगे। मगर उस सर्वाइवल जिसका है, उस व्यक्ति का सशक्तिकरण कैसे होगा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना घर पे ना शिक्षा संस्थान में। घर पे पेरेंट्स के पास समय नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर है, सुबह पेरेंट्स निकल जाते हैं 8 बजे, रात को 8 बजे वापस आते हैं, तो बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं, तो उनको मेड संभाल रही है या क्रेश में जा रहे हैं। तो ये संस्कार जो मिलने चाहिए थे बच्चों को मिलने हैं। गुरु नानक देव जी की बात मुझे याद आती है, गुरबानी में वो कहते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है मनमुख, एक होता है गुरुमुख। हम जो आजकल जो हमारी सारी जो शिक्षा पद्धति है वो फंक्शनल एजुकेशन दे रही है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रही है, या थ्योरी भी दे रही है, तो वो भी इसीलिए है कि रोजी रोटी कैसे कमानी है। तो उसके कारण वो सारा उसका जो बच्चे का जो ध्यान है वो बाहरी संसार के ऊपर केंद्रित है, तो वो मनमुख हो गए हैं। जो माइंड है वो मन है, मन जो है वो कनेक्टेड है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। हमारे सनातन धर्म में जब आप शिव जी को देखते हैं, उनकी मूर्ति को देखते हैं, तो उनके सिर पे चंद्रमा होता है, चंद्रमा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती और वो ठंडा होता है। तो इसी प्रकार आपका जो मन है, इसके अपने विचार नहीं होते, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है विचारों को, ये अपनी उपज नहीं होती, विचार इसके अंदर से नहीं निकलते, या तो संसार से, बाहरी संसार की जो सेंसरी परसेप्शन से, जो इंद्रियों से उसको सेंसेशंस मिलती है, उनसे उनके आधार पे वो अपने विचार बनाता है। जो गुरुमुख होता है वो बाहरी संसार से न कनेक्ट करके अपने आप को अपने हृदय के में जो वास करते हैं, श्री कृष्ण कह दीजिए, ब्रह्म कह दीजिए, कुछ भी, अल्लाह कह दीजिए, खुदा कह दीजिए, जो भी अंदर, जैसे भी आपकी संस्कृति है, उसके अनुसार जो अंदर वास करता है उसकी तरफ
0: कनेक्ट होने की कोशिश करता है,
1: कनेक्ट करता है, तो उससे क्या होता है अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सेक्रेड हार्ट कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, हमारे यहाँ पे साइकिक हार्ट कहा गया है सनातन धर्म में।
0: जी,
1: तो चेतना का वास यहाँ पे होता है एक्चुअली इंटरनल, तो वहां से वो कनेक्ट होता है, तो उसके विचारों की श्रृंखला वहां से निकलती है और रिफ्लेक्ट माइंड में होती है, तो माइंड परसीव करता है इनर रियलिटी। जो इनर रियलिटी से जब आप इनर कंट्रोलर से आप कनेक्ट होते हैं, तो फिर आप जो बाहरी संसार जो आपका प्रोजेक्शन है, आप उसके मास्टर बन जाते हैं। श्री अरविंदो कहते हैं, पहले स्वराट फिर सम्राट। जो सम्राट बना वही सम्राट बनेगा। सम्राट आप ऐसे नहीं बन सकते, आप बाहर के संसार को बदलने की कोई चेष्टा कीजिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत विस्तृत है। आप अपने अंदर की दुनिया जो अंदर है वही बाहर है, जो जो बाहर है वो अंदर है। आप उसके अंदर अपनी चेतना में अगर रूपांतरण लाएंगे, उसमें क्वालिटेटिव चेंज लाएंगे, उसमें जब क्वालिटेटिव चेंज आएगा आपका बाहरी संसार अपने आप उसमें एक काया कलप आएगा, वो चेंज हो जाएगा।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: और इसी के ऊपर लोगों ने कितनी किताबें लिख ली, द सीक्रेट वगैरह।
0: ये जी,
1: क्योंकि अंततः आपके अंदर का जो संसार है, क्योंकि हम इसीलिए कहते हैं ना अहम ब्रह्मा आई एम द लिमिटलेस सेल्फ, तो इसलिए शिक्षा पद्धति का ये अभाव है। शिक्षा पद्धति इसको टारगेट नहीं कर रही, इसको अग्रेस नहीं कर रही। तो हमें ये कंपल्सरी कर देना चाहिए कि जो साइंस ऑफ वेदाज है, साइंस ऑफ उपनिषद है, ये साइंस है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये मंबो जंबो नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है,
0: ठीक है,
1: ये ज्ञान है मनुष्य के सशक्तिकरण का।
0: बहुत अच्छा।
1: आप वहाँ पे सशक्त हो जाएंगे, फिर आप संसार में कर्म कीजिए
0: जी, जी।
1: आपका कर्म, आप अपनी संकल्प शक्ति से चीजें कर सकते हैं,
0: ठीक है,
1: संकल्प शक्ति से।
0: मैं इसी जी
1: कहता है कि वो जो कर्म आप एफर्टफुल एक्शन जो करते हैं वो व्यर्थ है, एफर्टलेस एक्शन होना चाहिए।
0: सो लिसनर्स, कहने का एक आशय यही है, अगर इस बात का निचोड़ निकाला जाए, सर ने जो जिक्र किया कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से कमाए हैं, जो हमने उनको अडॉप्ट किया है, वही अगर हम अपने बच्चों में दे पाए तो निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, और व्यक्तित्व में जब निखार आएगा तो वही एक बच्चा आगे चल के देश के निर्माण में अपना योगदान देगा। बात हुई साधने की, मैं कहूंगा कि अगर आप अपने आप को साध रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, अंदर जो क्या है, जो एक चेतना है, उससे आपने कनेक्ट अपने आप को कर लिया, तो निश्चित तौर पर जहां संकल्प होगा उसमें कोई विकल्प आ ही नहीं सकता, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ब्रेक के उस पार आएंगे और बात करेंगे, सर ने जो एक इशारा मुझे किया है कि एजुकेशन पॉलिसी, शायद मैं समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं, इसके बारे में हम सर से जरूर जानेंगे ब्रेक के उस पार, कि पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी में क्या फर्क है और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। वर्तमान समय में कुछ चीजें हो भी रही हैं, और अगर इस तरीके से इंसान अपने जीवन में शामिल कर ले, एक विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को शामिल कर ले, तो निश्चित तौर पर उसकी जय जयकार होती है। और कहते भी हैं कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, लेकिन जो अच्छा करता है तो उसकी जय जयकार जरूर होती है। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, और स्टूडियो में आज जो खास मेहमान है, फोनिक हमारी बातें हो रही हैं, आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में, प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धर सर। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल के बारे में, हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में, हम संस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं, एक विद्यार्थी को किस तरीके से अपनी जिंदगी में चार चांद लगाने चाहिए, यही सारी बातें हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि केधर सर। आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली से। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। आपने जो एक बात कही कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, शिक्षा हमारे जीवन में एक परिवर्तन ला सकती है, ये सच बात है। और हमारे इसमें संस्कार मिल जाएं, इसमें अदब मिल जाए, कुछ आध्यात्मिक बातें मिल जाएं, तो नो डाउट एक जिंदगी में बहुत अच्छा चेंजेस आते हुए हमें नजर आएंगे। सर मैं इस बात को यूं कहूं कि, या मैं आपसे समझना भी चाह रहा हूं कि पुराने समय की बात करें और अब वर्तमान समय की हम बात करें, शायद एजुकेशन पॉलिसीज थी पहले, कुछ अब आई हैं, तो कितना फर्क आप महसूस करते हैं, क्या बदलाव महसूस करते हैं, क्या सही था क्या गलत है, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? सर
1: मैं एक तो जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो है। जैसे उन्होंने बात की है कि हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको हमें रिवाइव करना चाहिए और उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात कही गई है, मगर इसमें जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि उस समय जो ज्ञान जो लिखा जाता था किताबों में वो पोएटिक रूप में लिखा जाता था। मतलब पोएटिक जब मैं कहता हूँ मतलब सिंबॉलिक, सिंबल के द्वारा, क्योंकि उस युग के लोग अलग थे, संस्कृति उनकी अलग थी, उनका समझने का तरीका अलग था, वो सिंपल लोग थे, वो पोएट्री की जो सिंबॉलिक भाषा है उसको सहज ही ढंग से समझ लेते थे। हम जिस युग में रहते हैं वो साइंटिफिक युग है, रैशनल युग है, इस युग हम प्रोजेक लोग हैं, हम प्रोज वाले लोग हैं, पोएट्री वाले लोग नहीं है। हमें चाहिए कि उसी ज्ञान को अब साइंटिफिक वे में हमें पेश करने की आवश्यकता है। अब साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब इस साइंस के प्रगति के आधार पे हम बहुत अच्छे से अपनी जो वेद और उपनिषद है उनको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर उनको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं तो उससे बहुत हमारे जो लाभ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा गया है जहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी हमारे यहाँ पे क्योंकि एक भ्रांति रही है स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया हाँ, साधु बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये भ्रांति मन से निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो है ये करप्शन है हमारी थॉट का, क्योंकि बीच में जब क्योंकि हम वैदिक ज्ञान से कट चुके थे और बीच में जो अलग अलग जो मूवमेंट्स आए, रिवाइवल्स आए, उनमें संन्यास का बहुत ही ज्यादा फोकस था, उससे हमें लगा कि जो इस तरफ जाएगा तो वो सन्यासी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, वो संसार छोड़ देगा। मगर अगर आप वैदिक ऋषि देखो वो सब हाउस होल्डर रहे हैं, वो गृहस्थ थे सारे हमारे, और जो संन्यास और वानप्रस्थ वो तो सिर्फ एक दो आश्रम है हमारे जीवन में, बाकी ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम वो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है।
0: जी।
1: तो वेद कभी नहीं कहता कि आप अगर इन सब चीजों का अध्ययन करते हो तो आपको साधु बनना है, क्योंकि वेद जिस बात की जिस ज्ञान की चर्चा करता है वो इंटेग्रल नॉलेज है, वो ये नहीं है, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करता कि ये आध्यात्मिक ज्ञान है और ये सेक्युलर ज्ञान है कि अर्थली ज्ञान है, ये आपको रोटी कमाएगा, वो दोनों को इकट्ठे लेता है, उसमें समन्वय है दोनों का, क्योंकि वो ये इसको कंटिन्यूअम मानता है।
0: जी।
1: और इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ,
0: तंत्र
1: में जब हम बात करते हैं पांच तत्वों की बात करते हैं कि ये संसार पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल,
0: वायु,
1: अग्नि, वायु और आकाश, ये हम क्या समझते हैं, हम इसका मूल मतलब लिटरल मीनिंग ले लेते हैं, ये सिंबल्स है। पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी नहीं है, यहाँ पे पृथ्वी का मतलब है सॉलिड, जो फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं
0: जी,
1: थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पृथ्वी का मतलब है सॉलिड, जल का मतलब है लिक्विड, और जो वायु है उसका मतलब है गैसेस। ये तीन स्टेट्स है मैटर की, और ये स्टेट्स चेंज किससे होते हैं, अग्नि से, इसलिए पृथ्वी जल अग्नि वायु और जब उसको और हीट देंगे लिक्विड को तो वो क्या बन जाएगा, आकाश, क्योंकि मॉलिक्यूल इतने दूर हो जाएंगे कि वहां पे सिर्फ स्पेस रहेगी, सिर्फ अंतरिक्ष रहेगा, वहां कुछ नहीं रहेगा। तो ये सारा साइंटिफिक है,
0: साइंटिफिक
1: हमें समझने की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हमें शिक्षा पद्धति को बदलना है और अपने देश को प्रगति की राह पे अग्रसर करना है, सबसे पहले हमें इनका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन कराना चाहिए सारे हमारे ज्ञान का, और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और साइंटिफिक वे में उसको एक्सप्लेन जब हम करेंगे
0: जी।
1: तो हम पाएंगे कि ये ज्ञान हमारे लिए इतने अनलॉक करेगा सीक्रेट जिससे कभी आपको बीमारी नहीं होगी।
0: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सर।
1: आप योग, राजयोग, इनको सबको हमने अलग अलग कर दिया है। हम फ्रैगमेंटेशन में चले गए, हम इंटीग्रेशन में नहीं रहे, जबकि वेद इंटीग्रेशन पे फोकस करता है ना कि फ्रैगमेंटेशन पे। और जितना हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम पाएंगे कि हम अगर हठयोग करेंगे उसी में राजयोग भी हो जाएगा, उसी में आपकी समाधि भी हो जाएगी
0: और सारे काम हो जाएंगे,
1: आपको शक्ति देगा इस संसार में काम करने का। और देखिए एक सुंदर शब्द आता है वेद में, वो शब्द है आर्य। आर्य का शब्द, आर्य शब्द का जो अर्थ है वो महर्षि अरविंद ने बखूबी समझाया है। आर्य किसी रेस का नाम नहीं है, ना किसी भाषा का नाम है। आर्य उस व्यक्ति का नाम है जो कि अपने चैतन्य शक्ति से कनेक्टेड है, जिसमें चैतन्य शक्ति का वास है, क्योंकि उसमें चैतन्य शक्ति है। वो शक्ति जो है न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो शक्ति है।
0: क्या बात?
1: और ऊपर चैतन्य भी है, कॉन्शियस भी है। तो उसमें जब एक कोई संकल्प बनता है, एक इंटेंशन बनता है, तो वो उसमें शक्ति इतनी जाती है उस संकल्प में कि वो क्रियान्वित हो जाता है, एकदम से वो रियलाइज हो जाता है
0: जी।
1: तो ऐसे व्यक्ति का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता।
0: क्या बात?
1: तो ऐसे व्यक्ति को आर्य कहा गया।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: तो ये सब चीजें हम भूल चुके हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम बच्चे बन गए हैं, पूरा अज्ञान के अंधकार में हम घूम रहे हैं। और पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी ज्ञान जो है वो तो बहुत कुछ नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है जब हम उसको कंपेयर करते हैं वेदों के ज्ञान के साथ। मगर हम उसी में डूबे हुए हैं, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डील करता है, जबकि हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को लेते हैं और उनका इंटीग्रेशन करते हैं
0: जी। जी,
1: क्योंकि अगर आप एक व्हील को देखें, व्हील के अंदर जो हब होता है, धुरी होती है उसके, जिसके एक्सिस होता है, जिसके इर्द गिर्द वो पहिया घूमता है, वो न मोशन में होता है न रेस्ट में होता है, वो ट्रांसेंडेंटल होता है
0: जी। जी,
1: जिसको हम कहते हैं गुणातीत, गुणातीत परा पर ब्रह्म, वो उस अवस्था में होता है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा।
1: और इर्द गिर्द जो घूम रहा है पहिया वो आपका प्रकृति को दर्शाता है, उसमें स्पेस भी है और समय भी है, काल भी है, इसलिए उसको काल चक्र कहा गया।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी आपने।
1: दोनों इकट्ठे हैं, हम क्या करते हैं उसको अलग कर देते हैं कि प्रभु अलग है, व्यक्ति अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ हम बार बार हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब सर्वव्यापी का अर्थ तो समझो।
0: समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिल्कुल सही आपने कहा सर कि उस अर्थ को समझना पड़ेगा। और लिसेस मैं बस यही कहूंगा कि इस बात का अगर एक सार निकाला जाए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ, संस्कारों के साथ, संकल्प के साथ, अपने ज्ञान को अर्जित करते हुए, उसमें इजाफा करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। और अगर आपको ऐसे गुरु मिल जाए मिस्टर रवि के धर सर जैसे, तो निश्चित तौर पर उनके आप पैर पकड़ लीजिए, जानिए, समझिए, उनकी संगत करिए, और वहां जब आप बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। ये संस्कार रहे हैं भारत के, ये परंपराएं रही हैं भारत की, क्योंकि आपको वो खाली पात्र रखना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति में, जिस स्टूडेंट्स में, अगर कहते हैं ना आम भाषा में कहा जाए, ऐठ आ गई कि हाँ गुरु जी, हाँ टीचर जी, मुझे सब कुछ आता है, और आप अदब ना करेंगे, सम्मान ना करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती यही रही है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था, विश्व गुरु, विश्व बंधु बन सकता है, हम आगे चल सकते हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे, क्योंकि हम युवाओं का देश है। और अधिक जानकारी के लिए यूं कहूंगा कि सर का एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, मिस्टिक मरीनर, कहा जाए तो रहस्यवादी नाविक। तो इस तरीके से बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें, जिंदगी को नजदीक लेकर जाने वाली बातें यहां आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सर आखिर में मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमें समय दिया, फोनिक हमारी आपसे बहुत अच्छी चर्चा रही। निश्चित तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लिसनर्स हैं, इस बात का लाभ उठाएंगे अपनी जिंदगी में, अगर वो परिवर्तन ला सके तो हमारी चर्चा जरूर सफल होगी। सर
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे अपने स्टूडियो में निमंत्रण देने का, और आपका और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर। सो लिसनर्स बताएगा जरूर ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, फिर कहूंगा प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, और ट्रैफिक के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करिए, क्योंकि घर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। फिर होगी आपसे मुलाकात, नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूँ गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने खास प्रोग्राम के माध्यम से। इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ, लेकिन आज एक खास प्रोग्राम हम लोग डिजाइन कर लेकर आए आपके बीच में, और पुरानी यादों को ताजा करेंगे, उन यादों को ताजा करेंगे जब हम लोग देखा करते थे, जब हमारी बुनियादें बुनियाद यानी कि परिवार से जुड़ा करती थी। बुनियाद सीरियल का मैं जिक्र कर रहा हूं मैं हम लोग का, और उस अभिनेता का जिसकी बदौलत हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती, जिसकी बदौलत हमारे चेहरे पर खुशियां तमाम आ जाती। जी हाँ, मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं नन्हे एक्टर, जिन्हें हम नन्हे एक्टर कहा करते थे, जिनका नाम बहुत ही खूबसूरत है, अभिनव चतुर्वेदी जी। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद, मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ आकर शारदा यूनिवर्सिटी और आपके स्टूडियो में, और सुनो शारदा 90.8 FM। मैंने सुना है कि बहुत बड़ा अच्छा आपका एक विकसित समुदाय चैनल है
2: जी।
1: 16 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, काशी मेरे घर सरता विहार तक भी आ सकता
2: जी,
1: लेकिन सुना उसके लिए भी आपने एक ऐप निकाल दिए।
2: क्या बात,
1: तो अच्छा है कि एक कम्युनिटी रेडियो, जिसकी बहुत सख्त जरूरत भी है, क्योंकि देश दुनिया की खबरें तो टेलीविजन दे ही देता है, लेकिन समुदाय की जो न्यूज़ है, जो उसके अपने अपने रोज़मर्रे के काम है, उसमें आप इतना अग्रणीय होकर काम कर रहे हैं। गगन जी, मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूँ।
2: देखिए दोस्तों, ये एक बात है, एक सुलझा हुआ इंसान ही कर सकता है, सुलझा हुआ एक कलाकार ही कर सकता है। थोड़ी ही बातें हमारी ऑफ एयर हुई और सर ने उन बातों को एक अच्छी तरीके से पिरो कर हमारे सामने रख दिया। मैं आपको सर के बारे में और बताना चाहूंगा, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे आज साथ ही खास मेहमान हैं अभिनव चतुर्वेदी जी। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। और स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं नन्हे एक्टर, जिन्हें हम नन्हे एक्टर कहा करते थे, जिनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है अभिनव चतुर्वेदी। दूरदर्शन को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि दूरदर्शन से हमारी दूर दूर तक की यादें जुड़ी हुई हैं और वो दर्शन कराता था देश का, संस्कृति का, हमारी बुनियाद का। बुनियाद धारावाहिक को हम कैसे भूल सकते हैं जो एक ऐसी पृष्ठभूमि पर आधारित था, और उसके अभिनेता अभिनव चतुर्वेदी जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और फ्लैशबैक में मैं अगर जाऊं तो थिएटर से शुरुआत रही जब दौर गुजर रहा था एक आप अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं अभिनेता के साथ। तो सर वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: मैं उस दौर में जाना चाहूंगा जब आप क्रिकेट खेला करते थे, राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भी आपने पदार्पण किया, फिर इस तरफ आना कैसे हुआ अभिनय की दुनिया में?
0: गगन जी, मेरे पिताजी मॉडर्न स्कूल बारखंबा रोड में पढ़ाते थे और बहुत ही मायनाज, बहुत ही बड़ा नाम था उनका क्रिकेट कॉमेंट्री जगत में, अभय चतुर्वेदी। तो जैसे घर में परवरिश होती है तो वो हॉकी बहुत अच्छी खेलते थे, नेशनल्स खेले थे। मैं भी हॉकी बहुत नेचुरली खेलता था, अभी भी खेलता हूँ, लेकिन क्रिकेट की तरफ मेरा रुझान इसलिए हुआ क्योंकि कीर्ति आज़ाद हमारे स्कूल में थे
1: जी,
0: और वो जूनियर टीम में ही उन्होंने करीब एक ही मैच में डबल सेंचुरी लगा दी थी। तो कीर्ति भैया हो गए, भुवनेश चड्डा हो गए, दीपक चड्डा हो गए, अमिताभ कांत जो हमारे G20 के शेरपा हैं वो भी क्रिकेट खेलते थे
1: जी जी
0: मॉडर्न स्कूल में। तो इन सब सीनियर्स को देख देख के हमने भी 6th क्लास में क्रिकेट लेनी शुरू कर दी। KC शुक्ला जी हमारे कोच थे और साथ साथ में राजू सेठी, भास्कर पिल्ले ये भी आ गए थे स्कूल में, अतुल मारवा मेरे कैप्टन थे
1: जी।
0: तो फिर हमारे मैचेस होते थे सेंट कोलंबस स्कूल और बाल भारती FO स्कूल से, और बाल भारती FO स्कूल में 6th क्लास में मैं और मनिंदर सिंह जो दिल्ली इंडिया के फाइनली खेले लेफ्ट आर्म स्पिनर वो खेलते थे। साथ साथ में हमारे जब इंटर जोन मैचेस होते थे दिल्ली के जितने खिलाड़ी थे मनोज प्रभाकर हम लोग सब खेलते थे। तो अच्छी क्रिकेट होती थी और हॉट वेदर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते थे 6th फार्म से।
1: nice.
0: तो संदीप गोयल वहाँ पर खेलते थे। साथ साथ में जो जोन मैचेस होते थे जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के, तो कुछ बिहार ट्रॉफी में मेरा सिलेक्शन हुआ 11th स्टैंडर्ड में। मेरा पहला नेशनल्स था और पहला नेशनल्स जो CK Naidu Under ट्रॉफी में हुआ, तो गांधीनगर में सबसे पहला मैच हमारा हुआ संजय मांजरेकर के अगेंस्ट। और मेरी बॉलिंग एनालिसिस थी कोई 19 ओवर 12 मेडन, कोई 22 रन और विकेट लेस, लेकिन वो संजय मांजरेकर के साथ मेरी जिस मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, संजय से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। फिर मनिंदर थे ही साथ साथ में, फिर मैं कुछ बिहार नेक्स्ट ईयर दिल्ली के लिए भी खेला Under-19, और उसी साल मुझे कैप्टन उस मैच में सेकंड ईयर में चेतन शर्मा वाज प्लेइंग फॉर हरियाणा। तो हमारे मैचेस जो जोनल्स के होते थे चेतन शर्मा वेरी वेरी क्विक बॉलर और इंडिया को नॉक कर रहे थे। फिर Under-19 12th स्टैंडर्ड में आई वाज मेड कैप्टन दिल्ली स्टेट Under-19 इन गुवाहाटी, जहाँ हमने पिछले रनिंग चैम्पियंस गुजरात को 5.5 दिन में इनिंग्स डिफीट करके भारत के भेज दिया
1: जी,
0: और असम को भी यही किया। फाइनल में हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश से हुई, जहाँ विशाल भारद्वाज, दी विशाल,
1: बड़े बड़े दिग्गजों के साथ आपने खेला।
0: बंटी यूज्ड टू प्ले मिडल ऑर्डर बैट्समैन एंड लेग स्पिनर, तो विशाल भारद्वाज जिन्होंने माचिस बनाई है, ध्रुवी बिजली का मंडोला
1: जी,
0: बनाया
1: जी,
0: है,
1: जी, जी,
0: हैदर बनाई है।
1: बहुत
0: विशाल और मैं 12वीं साल क्लास से बंटी को मैं तब से जानता हूँ।
1: क्या बात।
0: और फिर जाके फिर इंडिया Under-19 में मेरा नाम आ गया, लेकिन मेरे फादर ने मुझे जाने नहीं दिया बिकॉज आई हैड माय बोर्ड एग्जाम्स। और फिर मैं Under-22 खेला दिल्ली के लिए, जहाँ मनोज प्रभाकर हम सब साथ क्रिकेट खेलते थे, और नवजोत सिंह सिद्धू मेरे कॉलेज में भी आए, दो तीन दिन मेरी क्लास में बैठे हिस्ट्री ऑनर्स में सेंट स्टीफन्स कॉलेज से, वहाँ भी अच्छी क्रिकेट खेली साथ में। और फिर Under-22 और 5 रणजी ट्रॉफी कैंप्स मैंने किशन सिंह बेदी जी के साथ अटेंड किए।
1: लवली।
0: तो वो क्रिकेट मैंने खेली डिस्पाइट माय फादर, मतलब मेरे फादर कुछ बोलते नहीं थे कभी किसी को सिलेक्शन में। वहाँ तक जाना चेतन चौहान, मनिंदर सिंह, मनोज प्रभाकर, चेतन चौहान, रमन लामा, कीर्ति आज़ाद, मदन लाल जो 83 की कप की, सुनील वॉल्सन, इन सब के साथ मुझे क्रिकेट खेलने का सौभाग्य मिला।
1: बहुत अच्छा।
0: तो फिर यूनिवर्सिटीज के मैचेस खेले, उसके बाद फिर क्रिकेट का भूत तो अभी तक नहीं उतरता
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: अभी भी हमारी वेटरन्स क्रिकेट इंटरनेशनल करके संजीव सेठ, उसके नॉर्थ के हैं, अभी हम 50 प्लस वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और अभी मैं डीडी स्पोर्ट्स में एंकरिंग भी कर रहा हूँ, और तो क्रिकेट से मेरा अभी तक संबंध है रहा है। भारत की जो विमेंस टीम ने जो
1: वर्ल्ड कप
0: जीता है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बहुत अच्छा है कि विमेंस टीम एक इंस्पायर करेगी और जनरेशन को भी, क्योंकि जिस बीड़े को जूलियन गोस्वामी या अंजुम चोपड़ा या मिताली राज ने उठाया था, वो इस टीम ने थ्रू
1: करके दिखाया,
0: हरमनप्रीत कौर ने उनकी टीम ने करके दिखाया है। बहुत बड़ी बात होती है कि मुसलसल आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यू नो कांस्टेंट प्रहार कर रहे हैं कि भाई हमें जीतना है, और इस बार उन्होंने करके दिखाया है, तो भारत उनको बहुत बधाई देता है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लिसनर्स, मुझे लगता है कि सर अगर अभिनय की दुनिया में नहीं होते, जिस तरीके से क्रिकेट में नाम कमाए और आगे जाकर और नाम कमाते और देश के लिए खेलते, लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट आता है और उसके बाद हमारी लाइन चेंज हो जाती है। सर से मैं ये जानूंगा जरूर कि किस कदर ये लाइन चेंज हुई, क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, और अभिनय की दुनिया में आना कितना आसान है, क्या टफ है। स्टूडेंट्स के लिए वो क्या एक संदेश आखिर में देना चाहेंगे, आखिर मैं आखिर की बात कर रहा हूँ अभी नहीं, तो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनको देखकर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम खुश होते थे, हम मनोरंजन की दुनिया में चले जाया करते थे, उनको देखकर हम बड़े हुए हैं। हमें भी लगता था कि हमें भी एक ऐसा ही एक्टर बनना है। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं हमें लगता है कि निश्चित तौर पर जब हम क्रिकेट खेला करते थे या खेलेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे। जी हाँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं बुनियाद और हम लोग के बड़े खूबसूरत एक्टर बाज सौदागर बुनियाद। इस तरह से तमाम यूं कहें कि एक लंबा अनुभव के साथ आप आते हैं। आप हैं अभिनव चतुर्वेदी जी। तो सर, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सर, ये जो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, ये जो चेंज आया जब आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे उसके बाद आपने स्विच किया अभिनय की दुनिया में, तो कितना आसान था या कितना टफ था?
0: देखिए, मैंने अभिनय शुरू किया 5 वर्ष की उम्र से। जब मैं ओम शुक्र जी जो हमारे स्कूल कैंपस में रहते थे
1: जी,
0: मेरे फादर भी वहीं रहते थे, तो हम लोग सब एक ही कैंपस में रहते थे, तो थिएटर तो मैंने बहुत जल्दी उम्र में शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ कि वो क्रिकेट भी शुरू हो गई, तब एक वन सिंगल व्हीलर से वो टू व्हीलर बन गया। अब गाड़ी और समझ में नहीं आती थी कैसे चलानी है, तो क्रिकेट अच्छा खेलना शुरू किया। इस पतला सुकड़ा सा मैं होता था, मेरे को ऑफ स्पिन फेंकनी आती थी और बैटिंग तो मेरी थी और फील्डर में बहुत अच्छा था।
1: आप अच्छे इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी, आंखें बहुत खूबसूरत हैं सर आपकी।
0: जब मार खाते हैं तो अपने आप अच्छे बन ही जाते हैं। मार खा खा के इंसान को, कहते एक शेर है उर्दू का
1: जी,
0: कि सुर्ख रू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद।
1: क्या बात।
0: तो जब तक आप पिसेंगे नहीं, जब तक इफ यू डोंट गो टू ग्राइंड सेशन वॉस में मैं ये कह रहा था कि जब तक आप ग्राइंड के थ्रू नहीं जाते,
1: क्या बात,
0: तब तक आप निखर के नहीं आते। और उसके लिए ग्राफ का ऊपर नीचे होना बहुत जरूरी है। पर मेरे गुरु इतने अच्छे थे कि दीनानाथ जी ऑल इंडिया रेडियो में, सत्यन शरद, मुद्रा राक्षस नाटकों में करने गया, ओम शिवपुरी जी, सुधा दीदी, सुधा आंटी, विवेकानंद साहब, बीएम शाह, विश्वमोहन बडोला, मेरी अपनी स्कूल की टीचर मिसेज उमा सहाय,
1: क्या बात,
0: और बनवारी तनेजा, रवि बासवानी, फिर जब मैं डायरेक्शन में मतलब एक्टिंग करने गया तो रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले बनाई थी, वो मेरे डायरेक्टर, सुभाष घई, सुभाष घई साहब, राहुल रवेल जी जिनके साथ मैंने 2 फिल्में की, राकेश कुमार जिनके साथ मैंने सूर्यवंशी की, और वो डायरेक्टर थे 11 फिल्म के अमिताभ बच्चन जी के साथ,
1: बहुत बड़ा था,
0: बाज गोविंदा जिसमें एच सुभाष डायरेक्टर थे। तो वो सारा का सारा जो गुरुओं के थप्पड़ पड़ने, मतलब शिक्षा के थप्पड़ पड़ने, उसने मुझे हमेशा, कहीं मैं गलत हुआ तो सवाल पूछ लेता था भी क्या प्रॉब्लम है, और वो वैसे ही थे कि आज तो बताना है, डिटेल में समझाना है। तो वो एक अच्छे, आई वाज लकी कि मुझे अच्छे गुरुओं ने उठाया भी, और जब मैं फॉल किया, मेरी जब पहली फिल्म फ्लॉप हुई पर्वत के उस पार, तो उसने मुझे संभाला भी।
1: क्या बात है
0: कि डोंट गिव अप, वी आर ऑल देयर फॉर यू। और मेरी पिक्चर फ्लॉप होने के बाद रमेश जी ने मुझे भ्रष्टाचार फिल्म दी रेखा जी मिथुन जी के साथ और रजनीकांत सर के साथ काम करने के लिए, और राहुल जी ने मुझे दी योद्धा संजय दत्त और सनी देओल के साथ। दोनों फिल्में फिर मेरी अच्छी हुई और ठीक ठाक चलता गया। फिर जब सौदागर कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मुझे, मेरे फादर को कैंसर हो गया तो मुझे दिल्ली वापस आना पड़ा, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो मेरी शादी हो गई और फिर मैंने अपनी दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। अब मैं जब वापस शिफ्ट किया तो मैं डिप्रेशन में चला गया, बिकॉज मेरे पास कोई काम नहीं था
1: जी,
0: और सब यही सोच के गए थे भैया यहाँ से तो हीरो बन के जाएंगे
1: जी जी,
0: और लौटे जीरो बन के, तो सब ये कहते थे कि भाई पता नहीं आदमी कैसे करेगा क्या करेगा
1: जी।
0: सो आई सेट अप माय ओन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी व्हिच इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग उसमें फिल्में बनाते हैं, कॉर्पोरेट जिंगल्स करते हैं, कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाते हैं। फिर जैसे जैसे लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, मैं एंकरिंग में चला गया, शोज को एंकर करने शुरू किया, और मुझे अवसर मिला भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का, कलाम साहब का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी मैंने काम किया, जगजीत सिंह के साथ मैंने 32 साल काम किया,
1: बहुत बड़ा,
0: अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ

0: मैंने 10 से ज्यादा कम से कम इवेंट्स किए होंगे एज एन एमसी एंड एन एंकर। और फिर मैं रेडियो मिर्ची पहुंच गया, तो जैसे एक लक्कड़ नदी में घूमता घामता पहुंच जाता है वैसे मैं भी पहुंच गया रेडियो मिर्ची। सो आई टू डू अ शो कॉल लल्लन भैया ऑन इन टू वॉइसेस ऑन अ संडे स्पेशल। उसमें वो लल्लन जो है वो चांदनी चौक का कैरेक्टर है। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है,
1: क्या बात है,
0: ये बुजुर्ग बोल दियो, चटक मारे इसको। और अभिनव चतुर्वेदी से वो बात करता था।
1: मतलब यू समझ लीजिए कि आप इस चीज के जनक हैं। आपको देख के रौनक ने शायद ऐसा किया होगा, या आपको देख के हम लोग कुछ ऐसा कर पा रहे हैं। न्यू जनरेशन भी कहीं ना कहीं ड्यूअल वॉइस के साथ काम कर रही है, तो हम तो भीष्म पितामह आपको कहेंगे।
0: देखिए मैं अपने आप को और भी सिंपल कर लूं, इसकी उत्पत्ति कहां से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमारे यहाँ भारत में टेलीविजन पे कोई पेयर्ड कॉमेडी नहीं रही। जैसे बाहर आप देखें तो लॉरेल हार्डी या बड एबट कोस्टेलो की जो क्लासिक सीरीज होती है, भारत में अभी तक टेलीविजन में कोई डबल कास्टिंग नहीं हुई। जैसे सत्यन हैरी में बना रहा हूँ, तो हम लोग जो पहले दिन ऑडिशन करने पहुंचे रेडियो मिर्ची, तो इंग्लिश में कर दिया, ओके हो गया, हिंदी में कर दिया, ओके। मैं बैठा हुआ था गर्मी का मौसम अपनी गाड़ी के अंदर
1: जी।
0: बहुत ही पक गया था, मैंने कहा यार अभी तक तो नहीं सर, यार ये चांदनी चौक का दिल्ली का चैनल है, जरा सोचा दिमाग लगा दिल्ली के चैनल में क्या करना चाहिए।
1: हाँ।
0: तो दिल्ली की असली पहचान पुरानी दिल्ली है।
1: हाँ।
0: पुरानी दिल्ली से कैरेक्टर लिया लल्लन, वो हैप्पी गो लकी बंदा है, वो कुछ भी कपड़े पहन लेता है, किसी की शर्ट उतार के पहन लेता है बड़ा। और वो हाँ। वो जो जहाँ रहता है उसका, हमने क्या किया उसकी गली का नाम दिया 98.3। उसके घर का नाम था 98.3। बोले उससे पूछता भाई तुम्हारे तुम कहाँ रहते हो, 98.3 मतलब क्या है सर, कोई एड्रेस होता है 98 एड्रेस होता है 99 98.3 कदम हुई तो फ्रीक्वेंसी हमारी। तो यू नो वो एक बड़ा हैप्पी प्रोग्राम था और उसको मैं ही लिखता था
1: जी।
0: तो हमारे एक मित्र हैं आप पार्टी वाले पुराने आशुतोष, तो आशुतोष के साथ में क्रिकेट मैच खेल रहा था, तो आशुतोष भैया ने मुझे कहा, क्राई का मैच था, ये ललन और अभिनव आप ही करते हो, और जिस तरह से उन्होंने कहा, मैंने कहा तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं ललन भी करता हूँ, तो कहते क्या जरूरत है अभिनव चतुर्वेदी को किसी एक घटिया आदमी से 20 साल काम करने के बाद गाली खाने की ऑन एयर। सो ही क्वाइट could relate to that part, कि ये वही कैरेक्टर है। और वो 3 साल प्रोग्राम चला एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द, मेरे लिए सबसे थेरेपी का भी उसने काम किया, कि एक तो व्यंग कॉमेडी और साथ साथ में सोशल इश्यूज को उठाना इंफॉर्मेशन के टूल पर। और इसमें आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक हमारे यहाँ एक वो जो चीज़ एल से होती थी उसको ओन कर लेता था, कि मतलब हमारी है। कहते हैं अभिनव जी जितनी गाड़ियाँ देख रहे हो ना रोड पे चलती हैं, जिस जिसके पीछे एल लिखा रहता ना हमारी लल्लन मोटर स्कूल की है। अब आप सोचिए कहीं से किसी का लेना देना नहीं, और ये लड़कियाँ ना बड़ी टेढ़ी चलती हैं, राइट का निशाना करके लेफ्ट पे चली जाती हैं, जरा धीरे चलियो। तो क्या होता है कि वो सारा का सारा जो रोड पे होता था
1: वो आप कैच कर,
0: अरे कहीं मिल जाए तो बता दीजिए हमारी मोटर स्कूल के हैं, हाँ ठोक दो तो ठोक दो, और जान बची रहनी चाहिए,
1: क्या बात है,
0: गाड़ी तेरे पर आ जाएगी, जान जाए पर वचन न जाए, यू नो दैट काइंड ऑफ सोशल एंगल से। और वो 3 साल बहुत हैप्पी स्कूल था। एक यहाँ तक कि एक पिक्चर में अभिषेक बच्चन का नाम था लल्लन, तो वो अभिनव चतुर्वेदी को गोली देता है, कहता आज मैं एयरपोर्ट पर ना मुझे लल्लन मिल गया था, कि लल्लन तो तुम ही हो, यानी वो आता अभिषेक, अच्छा अभिषेक कौन, बच्चन, अच्छा मतलब दिल्ली सुन रहे हैं आप, अभिषेक बच्चन अभी तेरे से मिलेगा क्या, तेरी मिला कैसे नहीं था, रात को 12:30 बजे आ गया हमारे पास,
1: आ गया, क्या बात है,
0: रात के 12:30 बजे कहाँ पहुंचा, अरे भाई 98.3 सांकड़ से उसने दरवाजा खटखटाया, बोले मैं कमिंग, हमने कहा आ जा भाई चांद कहाँ से आ रही है, बोल क्या चाहिए तुझे, ऐसा है मैं चाहता हूँ ना मेरी नई फिल्म आ रही है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना नाम लेंड कर दो, अच्छा मतलब तुमने उधार मांग लिया उससे, उसने तुमसे नाम ही इतना बड़ा उधार
1: लिया,
0: तो फिर वो कहता है कि कहता नाम तो ले जा पर ब्रांड को बट्टा नहीं लगना चाहिए, फिल्म सुपरहिट होनी चाहिए, नाम हमारा नाम इन्वॉल्व है। सी यू अ मैन हु वाज नॉट एग्जिस्टिंग, और मुझसे लोग आके कहते थे लल्लन से मिलना है, जबकि वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता था, मैं ही लल्लन था, मैं ही अभिनव था,
1: जिसमें एक जान।
0: तो वो एक आर्ट है जो विल, विल, विल, बाहर वेस्ट में बहुत पॉपुलर है वेंट्रोकुलिज्म के नाम से, जिसमें आप अपनी आवाज को थ्रो कर सकते हैं, उसका सहारा लेते हुए फिर वो शो 3 साल चला एंड आई रियली एंजॉयड इट। मैं तो खुद हंसता था वो शो लिख लिख के रात को, और मेरे घर वाले सोचते थे आदमी पागल हो गया।
1: नाइस सर। तो लिसनर्स ये बात बहुत ज्यादा खिंच गई, यहाँ पर एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ सर, पानी पी लेते हैं, मैं थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद हम आपको मिलेंगे ही। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरी यानी गगन के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत।
2: उषा, मेरे पास भी एक छोटा सा करेक्टर होता है, ये बहादुर जो कि नेपाल से आया।
1: ये सर एक छोटा सा करेक्टर मेरे पास होता जो मैंने कहा ना कि हम आप लोग को देखकर सीखकर बड़े हुए हैं और यहाँ कतई की भाषा सीख गया, यानी कि दिल्ली NCR की भाषा सीख गया। जो आपने ललन का जिक्र किया, मुझे सैयद जाफरी साहब का वो वाकया याद आ रहा है कि एक फिल्म आ रही थी, जिस तरीके से उन्होंने रिसर्च किया वो भी वहीं पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, चांदनी चौक पहुंचे, उस करेक्टर को उन्होंने उठाया, क्या कर रही है, कैसे जा रही है वगैरह वगैरह, उस तरीके से वो फिल्म में लेकर चले गए। ऐसी जब मैं कुछ करने जा रहा था तो मैं मथुरा के करेक्टर को उठाना चाह रहा था या फिर कुछ और खास उठाना चाह रहा था, मैंने बहादुर को पिक किया जो कि नेपाल से आता है और यहाँ की भाषा सीखता है, मिक्स होता चला जाता है। सो लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे स्टूडियो में अभिनव चतुर्वेदी जी, जो कि बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे एंकर हैं, अच्छे क्रिकेट, बहुत अच्छा क्रिकेट आपने खेला है, MC हैं और एंकरिंग की यूँ समझिए कि हमें बारीकियाँ सर से सीखनी चाहिए। जब मेरी मुलाकात सर से हुई फेस टू फेस, मैं कहने वाला था लेकिन अब मैं कह देता हूँ, सर माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आप आवाज़ के धनी भी हैं, आप हरफन मौला हैं, कैसे आवाज़ को मेंटेन करते हैं और कैसे हमें आवाज़ का ख्याल रखना चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहला आवाज़ को बचा के रखना चाहिए पानी की तरह
1: जी,
0: आवाज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आपको सब खाना चाहिए,
1: सब खाना चाहिए,
0: सब खाना चाहिए।
1: लोग कहते हैं खटाई नहीं खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना,
0: जैसा है जितना आप गले को अगर आप तंग नहीं करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। मैं आपको मकसद बता देता हूँ
1: जी,
0: एग्जांपल के सहित, इसका प्रमाण भी है मेरे
1: जी,
0: पास।
1: जी जी,
0: भारत में जितने शास्त्रीय गायक हुए हैं क्लासिकल के, वो सब अपनी सुपारी अपने पास रखते हैं और लॉन्ग सुपारी खाते हैं।
1: लॉन्ग सुपारी,
0: सुपारी की तासीर बेसिकली क्या है, वो खरज पैदा करती, खरज पैदा करती, जो रेशे सुपारी के वोकल कॉर्ड्स को खोलते हैं, उसकी सारी हस्क जो है वो सुपारी खाने से आती है। सुपारी खाने से,
1: ये कच्ची भीगी कैसे?
0: कच्ची सूखी सुपारी,
1: सूखी सुपारी,
0: गीली भी आप खा सकते हैं लेकिन सूखी सुपारी, सुपारी इसके जितने वोकल कॉर्ड्स के रेशे हैं वो सब खोलती है।
1: अब आप ये बताएं कि क्या उसको चबाने से या उसका रस लेने?
0: कुछ भी करने से उसको फर्क नहीं पड़ता।
1: अच्छा।
0: लेकिन आप किसी के हाथ से सुपारी नहीं लेंगे, बिकॉज सुपारी में बहुत सारा काम होता है, कभी पान भी किसी से नहीं लिया
1: जी, जी।
0: रोली मिला के उससे कुछ लोग टोटका कर देते हैं, आवाज चली जाती है। जितना आप अपने गले को उसको तोता बना के रखेंगे उतना तकलीफ करेगी, बिकॉज गले का ताल्लुक सीधा ईयर, नोट, नोज, थ्रोट। आपका वैसे भी नाक बंद होगी तो आपके गले पे असर पड़ेगा, बिकॉज दोस थ्री आर मेडिकली इंटरकनेक्टेड। एंड उसको आवाज को बनाना, ऑर्केस्ट्रेट करना, वो एक अलग चीज, क्योंकि हम फिर गायकी का भी प्रयोग करते हैं इसमें। हम लोग जब गाते हैं, जैसे मैं गाता हूँ तो मुझे गाने का शौक है
1: जी।
0: तो मेरी आवाज की टोनैलिटी किस सिंगर के साथ जा सकती है, मैं हाई पिच पे नहीं गा सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दो गजल का एक शेर सुना देता हूँ
1: जी, प्लीज।

0: क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह।
1: तो क्या है कि आपको अगर म्यूजिक की भी ग्रामर है, उसके उतार चढ़ाव, उसका क्रेसेंडो, उसका नीचे उतरना, तो आप जब मंदर सप्तक में गाएंगे नीचे करके तो अलग हो गया, फिर दूसरी जैसे वो पंकज जी की कोई

0: बहुत अच्छा, लवली। आज हमारा दिन बन गया, दिन
1: एक उस्ताद के बीच में हम बैठे हैं और एक अनुभव के साथ आप आते हैं और बहुत बड़ा अनुभव है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ आपसे सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। और खासकर जहां स्टूडियो में साथ भी तीन इंटर्न जुड़े हुए हैं, वो भी ये साक्षात्कार जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में उसको आत्मसात कर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे लेकर जा पाएंगे। अभिनव सर, आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बारीकी से आपने अपनी चीजें बताई हमें, हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप हेल्दी रहें।
2: बहुत बहुत अनेक आभार आप सभी का। और मशीन्स तो मशीन्स हैं, इनसे काम लेना भी हमें आता है। भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हम इन्हें मशीन बनाई और हम ही इनसे काम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी, आपने बुलाया एंड छोटी सी मुलाकात की। इसी तरह सुनो शारदा, सुनते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ओले ओले ओले, ओ शोनक। हेलो, कौन?
3: नमस्कार, हम दस बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
4: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
3: जल्द मिलते हैं।
2: हेलो हेलो हेलो,
5: दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
6: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाए।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
0: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
1: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं, तुरंत साफ करते हैं। जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे, सबकी साफ सफाई करते हैं।
2: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
0: बहुत बढ़िया।

0: party.
1: Solo Sharda.
2: 94.5.
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
1: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
0: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
1: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
0: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
2: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ यही है कि हे ईश्वर पिता परमेश्वर, मेरी जो काया है वो निरोग आप रखें, आप हमें ऐसा आशीष दें, आप हमें ऐसा वर दें, ये ईश्वर से हमारी कामना है। लेकिन सच बात तो ये कि अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि ईश्वर, खुदा, पिता परमेश्वर हमारी मदद करेगा। और कहा भी जाता है कि निरोगी काया अगर आपकी है तो यकीन मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी आप ही हैं। राम राम, दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभकारी, और मैं हूं गगन आपके साथ। दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले हैं, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। वाकई एक गंभीर विषय है, अच्छा विषय है, और इसको जानना समझना बहुत जरूरी है और जागरूकता भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, 10 से लेकर 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करेंगे हमारे चिर परिचित हमारे भैया अर्थात सेहतिया सिंह जी। तो सेहतिया सिंह जी, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद गगन जी। जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसीलिए इस उम्र में सही बातें जानना और समझना बहुत ही जरूरी है, और आज मुझे लगा आपसे बात करके हम अपने प्यारे मित्रों के साथ ये जानकारी साझा कर पाएंगे।
4: भाई सेहतिया सिंह जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। वैसे किशोरावस्था के दौरान शरीर और मन में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि आप भी उम्र दराज हैं, आप भी उस दौर से गुजरे हैं, मेरे भी घर में बच्चे हैं, आपके भी घर में बच्चे हैं, हम समाज को देखते हैं, तो एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं।
5: भाई, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, हम सभी के घरों में बच्चे हैं और वो उम्र के साथ ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जिन्हें कई बार वो आपस में या अपने बड़ों से साझा नहीं कर पाते। दरअसल जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाती हैं। शरीर बदलेगा तो उसका असर मन पर भी पड़ेगा ही, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
4: वाकई बहुत अच्छी बात आप एक अनुभव के साथ हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सियातिया सिंह जी, एक अनुभव मैं भी साझा करना चाहूंगा इस बात पर आने से पहले जो हम स्क्रिप्ट के आधार पर पढ़ रहे हैं
5: जी।
4: मेरे एक मित्र थे साकिब साहब, उनके घर में कोई समस्या, मैं समझता हूँ खुलकर बात कर लेता हूँ, उनकी कोई एक महिला मित्र थी, उनके सामने कोई समस्या आई। चूंकि हम डॉक्टर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दो बातें हो सकती थी सर वहां पर, या तो मुझे हंसना चाहिए था या मुझे समझदारी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि मुझे लगा कि उसने बिना बेझिझक मुझसे बातें की, तो वही समझदारी दिखाते हुए मैंने भी वही बात डॉक्टर साहब से जानकर पूछकर उस समस्या का हल उन तक पहुंचा दिया। आशय दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही कि हमें भी इसी प्रकार की समझदारी दिखाने की बहुत जरूरत है, और शायद ये जो कहानी है, ये जो स्क्रिप्ट है, आगे हमें यही बताएगी। लेकिन भैया, अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बातें करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
5: भाई देखो, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये अगर महिलाओं से संबंधित है तो इसके बारे में जानकारी केवल महिलाओं को ही हो, पुरुषों को भी इसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, वरना कई प्रकार की भ्रांतियां मन में पल जाती हैं और उन्हें लेकर समाज में किसी तरह की कुंठा बन जाती है। ऐसा हमें समाज में नहीं होने देना चाहिए। अब बात आती है गर्भ ठहरने की, यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझें कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बनना कई प्रकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सभी को होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर ही लेना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का पूरा हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का भी पूरा अधिकार है। ये समझना ही असली समझदारी है।
4: वाकई सेहतिया सिंह जी, आपने बहुत सच्ची अच्छी बात हमारे श्रोताओं तक आम भाषा में समझा दी। दोस्तों, इस बात को जानिए, समझिए, और जो आपके करीब है, जो करीबी है, उसे जरूर शेयर करिए। समस्या अगर कुछ है तो निश्चित तौर पर उसका समाधान है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी किशोर को डर लगे या शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो सेहतिया भैया उस वक्त उसे क्या करना चाहिए?
5: सवाल उठाना ही सबसे अच्छी बात है। ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से, या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
4: वाकई बहुत सच्ची अच्छी बात आपने फिर से दोबारा हमारे श्रोताओं तक पहुंचा दी। सियातिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत, मर्द बन का बोझ हमेशा रहता है। तो ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
5: बिल्कुल गगन जी, चाहे गाँव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई, लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे। इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, वो भी उचित समय पर, और ये उन्हें अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी भी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ भी देना है।
4: बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी बात सुननी है, समझनी है, और जो आपने कहा आखिर में कि उनको डांटना नहीं है। डांटने का मतलब सेहतिया भैया, मुझे लगता है कि बात का विरोध करना या बात को वहीं रोक देना है। लेकिन जब आप बात को सुनेंगे तो वो अपनी समस्या आपके सामने लेकर आएगा और मैं समझता हूँ कि वक्त रहते हुए उसका समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते जी जी, कुछ कह रहे थे।
5: दरअसल हम कई बार बच्चों को डांट इसलिए देते हैं कि या तो हमारे पास उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है या फिर हम उनसे इस विषय पर बात करने में झिझकते हैं।
4: बिल्कुल,
5: जबकि ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कोई किशोर अपने बड़ों से इस विषय पर बात करना चाहता है तब वह ये समझता है कि ये सबसे मेरे निकट हैं, इसलिए मुझे अपने मन की बात इनसे कह देनी चाहिए। वहीं इस समय पर अगर उन्हें डांट दिया जाए तो वे किसके पास जाएंगे।
6: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आप कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि एक अनुभव वाले व्यक्ति को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया जो अपने अनुभव के साथ हमारे साथ ये बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। सेहत है भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
5: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। अभी हाल ही में दिल्ली का एक केस सभी ने सुना होगा, इस विषय से संबंधित ही वह समस्या थी। खैर आज के विषय पर बात करते हैं। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे दोनों पर खतरा आ सकता है, फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट कर रह जाती है।
6: बिल्कुल आपने सही कहा। अब मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से, समाज की वजह से चोरी छुपे गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है? क्योंकि मैं बहुत डर के ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, और जबकि मैं समझना भी चाहता हूँ, हमारे लिसनर्स भी समझना चाहते हैं कि ऐसे में सही कदम क्या होगा।
5: दरअसल जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बह जाना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से उसे बिल्कुल बचाया जा सकता है।
6: बिल्कुल दोस्तों, आखिर की जो लाइन है उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा, अर्थात दोहराना चाहूंगा, सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है जो हमारे सेहतिया भैया आपको बता रहे हैं। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा सेहतिया भैया कि अब एक दूसरी समस्या पर हम बात करना चाहेंगे। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?
5: दरअसल किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वे कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं।
6: जी।
5: अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए तो वे अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
6: बिल्कुल आपने सही कहा, और यही वजह है कि कहते ना कि घर प्राथमिक पाठशाला होती है, और यहाँ आप अपने माता पिता से यानी कि पेरेंट्स से अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात सियातिया जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि संगत का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपकी संगत अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सियातिया जी, हम समझना चाहते हैं कि हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें की हैं, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो सवाल यही है कि क्यों बढ़ रही हैं?
5: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता ही है, और ऊपर से समाज की उम्मीद कि तू लड़का है, रो नहीं सकता, या तू लड़की है, समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाजत नहीं है, तो क्या होगा? ये कुछ वैसा ही होगा जो अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक केस में हुआ, जहां पर लड़की ने घर वालों से अपने गर्भावस्था को छुपाए रखा और लंबे समय तक नहीं बताया। नतीजा, जब ये बात खुलकर सामने आ गई तब उसके माँ बाप ने उसका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि आगरा ले जाकर उस बच्ची की पानी में डुबोकर हत्या कर दी। सोचिए, एक बाप जिसने उस बच्ची को पैदा किया, बड़ा किया, अपने हाथों से उसकी जान ले लेता है, कितना गलत है। लेकिन इस सिचुएशन सोचिए बनी क्यों, क्योंकि यदि उस पिता ने उस बच्ची की बात शुरुआत में सुनी होती या उसे मौका दिया होता बात करने का, या माहौल घर में इतना खुला रखा होता, तो ऐसी मुसीबत घर में आती ही नहीं, या समय रहते इस बात को समझ लिया गया होता और बच्ची का अगर गर्भपात कराने की आवश्यकता होती तो समय रहते इस पर कोई उचित निर्णय ले लिया गया होता, मगर क्योंकि हम परिवार में बच्चों को इतना बोलने की छूट ही नहीं देते जिसके चलते वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसी के चलते कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, इससे उन्हें डर लगता है। उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहें, ऐसी बातें मत करें, इसलिए किशोर को सुनने और समझने की बहुत जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं है, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है और बड़ी मुसीबतों से बचा जा सकता है।
6: भाई आपने बहुत विस्तार से एक उदाहरण के साथ आपने एक बात रख दी, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं और आपने जो जिंदगी में देखा है, जो आस पड़ोस में देखा है, वो बात आपने सामने रख दी। तो मुझे लगता है कि सही कहा कि अगर वक्त रहते हुए समस्या का समाधान ढूंढना है तो समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। दोस्तों, किशोरों के सामने बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सकें? जी सहित सिंह जी।
5: हाँ बिल्कुल, सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लिए जाने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है, इसे लेकर शर्माने की जरूरत कतई नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
6: बिल्कुल आपने सही कहा कि बातों को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि रिश्ते मजबूती से हम लोग आगे निभा सकें। जो संबंध है पिता पुत्र का, माँ पुत्री का, या एक परिवार का एक दूसरे के साथ जो संबंध बना हुआ है, वो समझदारी से ही निभाया जा सकता है। दोस्तों, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के उपाय यानी गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जानकारी भी दी जानी चाहिए? सियतिया सिंह जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
5: बिल्कुल, एकदम दी ही जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं

0: क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया या बताया गया तो वो कहीं ऐसा ना हो कि गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता सिखाना नहीं होता, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना होता है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, अध जल गगरी छलकत जाए, यानी आधी अधूरी जानकारी ज्यादा नुकसानदायक होती है। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सेहतिया भैया जी। आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी पहल हुई है, इसके बारे में भी बताइए।
1: बिल्कुल भैया, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाया कैसे जाए, इसके बारे में उचित जानकारी दी जाती है।
0: इसके बारे में उचित जानकारी दी जाती है, तो इसको जरूर आप सुने, जाने, समझें, और जब आप जानेंगे समझेंगे मुझे लगता है तो फिर कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है। यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे, अर्थात मदद लेना चाहे, तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं।
1: RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है, ताकि उनमें खून की कमी न हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों की सेहत की बातें कर सकें।
0: यानी कि गाइडेंस, मार्गदर्शन, ट्रेनिंग बहुत बहुत बहुत जरूरी है, और यही बात आप हमारे सेहतिया भैया से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता है सेहतिया सिंह जी, तो वो क्या होता है, क्यों होता है, अगर आप थोड़ा से विस्तार से बता सके।
1: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सीखती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है, ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड्स संभाल सकें। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थीं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता था। अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोरियों के लिए ही नहीं, बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर, सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वे सभी की मदद बिना भेदभाव के करें।
0: यानी कि ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, और इसको जान लीजिए, समझ लीजिए कि हम क्या करें क्या ना करें। भैया, अगर RKSK जैसा प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंचाया जाए, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप?
1: आप सही कह रहे हैं। देखिए भैया, एक और बढ़िया योजना है अर्श। इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
0: भाई, ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है। इसके बारे में और अगर हम कुछ बात कर सकें या कुछ और आप हमें आगे बता सकें तो प्लीज बताइए।
1: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको बता देता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था, तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKSK योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई, उन्होंने

0: लड़कियों से प्यार से बात की। बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है या प्रक्रिया है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी हैं। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरिता खुलकर बात करती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
1: बिल्कुल भैया, जब कोई इतनी गंभीर बात हो और खासकर सेहत को लेकर तो खुलकर बात करनी ही चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं हम दूसरों का भी नुकसान कर रहे होते हैं।
0: लड़कियों की सेहत और पीरियड से रिलेटेड एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी की एक बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों, नाम है पैडमैन। अगर हो सके तो कभी उसे देखिएगा, आपको समझ आएगा कि ये कितनी अच्छी जानकारी इस फिल्म के माध्यम से आम जनता के बीच में प्रसारित की गई है। खैर, आज की बात करें तो सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आते रहते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र गई तो वहां मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई, पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
1: बिल्कुल सही बात है दोस्तों, समय पर इलाज मिलना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। यानी कि एनीमिया, अगर शरीर में आपके खून की कमी है तो उसको एनीमिया कहा जाता है, और खून बढ़ाने के लिए हमारा खान पान अच्छा होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तो मतलब ये कि ये योजनाएं सच में जमीन पर असर कर रही हैं। ये मेरा सवाल है सियातिया भैया जी आपसे, तो मैं समझना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे आप।
0: आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, तो सुनिए। सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेंगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना न सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया, आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि अगर आपकी सोच अच्छी है, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, समाज के लिए और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो जो कुछ आप सीखेंगे और समाज में आप देंगे तो वो एक दूसरे की मदद से कहीं ना कहीं हम आगे अपने देश में योगदान दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, क्या कहना चाहेंगे।
0: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा भैया आपने, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कही के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले हम एक शपथ लेते हैं, और शपथ से पहले बस यही कहना चाहूंगा कि इस जानकारी का लाभ उठाएगा, जैसा जैसा कहा गया है इस पर गौर फरमाएगा, डिस्कस करेगा यानी कि चर्चा करेगा अपने एक्सपर्ट के साथ जो इस जानकारी को, जिनको मालूमात है। डरेगा मत, घबराएगा मत। तो सेहतिया जी एक शपथ लेते हैं, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलेंगे।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। जी हाँ, आरजे के रूप में मैं गगन आपके साथ जुड़ा रहा और सेहतिया के रूप में हमारे साथ जुड़े रहे
0: शरद शर्मा।
1: तो ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे वो आप सबके लिए खुले हुए हैं। जब भी मन करे तो आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विषय वाकई बहुत अच्छा था, गंभीर था और अच्छी तरीके से हमने आप तक पहुँचाया। फिलहाल वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: नमस्कार, सुरुशादा 90.8 FM पर, मैं हूँ गगन। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, और इस बात को अच्छी तरीके से समझाया भी जाता है कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। तो इसी प्रकार के कई सारे सुख बताए गए। जीवन में साफ सफाई का बहुत खास रोल है। अगर हमारे आसपास साफ सफाई है तो ये सच है कि हम कई प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो ये भी सच है कि स्वच्छता अभियान पूरे जोर शोर से हिंदुस्तान में चल रहा है। कहते हैं कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। साफ सफाई कितनी जरूरी है, इसका क्या रोल है हमारी जिंदगी में, इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए जाहिर सी बात है कि एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। और इस चर्चा में हमेशा हमें सहयोग करते हैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर आदेश के गढ़पले साहब शारदा अस्पताल से। तो ये सारी बातें जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आदेश के गढ़पले जी शारदा अस्पताल से। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर इस सहयोग के लिए, इस मुहिम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
3: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: सर, जिंदगी में साफ सफाई एक खास स्थान रखता है। चूंकि आप डॉक्टर हैं, आप आम जिंदगी में देखते हैं कि अगर साफ सफाई नहीं होती तो कई सारी बीमारियां घर कर जाती हैं और बहुत बड़ी समस्या एक किसी व्यक्ति को रोग के रूप में वो समस्या सामने आती है। तो कहने का आशय ये है कि हम धीरे धीरे सवालों का जो सिलसिला है, कई सारी बातें हैं, मैं बेसिक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि साफ सफाई को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे।
3: साफ सफाई भाई महत्वपूर्ण अपने जीवन का अंग ही माना जाना चाहिए। आप सब लोगों को पता है महात्मा गांधी जी ने सफाई के अभियान के बारे में बहुत सारा जोर दिया था। स्वतंत्र संग्राम आंदोलन चल रहा था, उसी पीरियड में उन्होंने स्वच्छता अभियान भी चलाया था और उन्होंने खुद अपने हाथ में झाड़ू लेके सफाई कराई थी। इससे ये पता चल जाता कि सफाई अपने एक जीवन का अनिवार्य अंग है। आप देखते हो कि भाई सफाई यदि घर में बराबर नहीं है तो आपको उस घर में रहने का मन ही नहीं होता। जैसे अपने कपड़े साफ होने चाहिए, अपना घर साफ होना चाहिए, घर के अगल बगल की सफाई होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी होती है।

0: अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि किसी भी बीमारी से बचने का जो तरीका है, जो एक उपाय है, वो है साफ सफाई। और अगर साफ सफाई रखकर हम कई बीमारियों से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। अगर जहाँ साफ सफाई नहीं होगी तो वर्तमान समय की जब हम बात करते हैं तो इस समय डेंगू है, मलेरिया है, तो और किस तरीके से हम बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, या यूं कहें कि साफ सफाई रखकर इन बीमारियों से कैसे हम अपने आप को बचा कर रख सकते हैं।
1: आपने सही बात किया, आपके अगल बगल में पेड़ पौधे उग जाते हैं, घास उग जाते हैं, पानी जमा हो जाता है, तो ऐसी चीजों में जैसे कि मच्छर पानी में पैदा हो जाते हैं और पानी एक जगह जमा होने की वजह से वो नीचे वाले जो हम शरीर अपने जीवन को पानी चाहिए उसको दूषित कर देता है। तो मच्छरों से होने वाली बीमारी जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये जल्दी ही अभी मौसम में आ गई है और काफी अभी हमने देख रहे हैं कि भाई हमारे अस्पताल में काफी मरीज इससे पीड़ित आ रहे हैं। दूसरी बात, गंदा पानी यदि हुआ है तो इससे जॉन्डिस फैल जाता है, टाइफाइड फैल जाता है, डायरिया हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, तो ये भी मरीज हमें काफी दिखाई दे रहे हैं। यदि हम अपने तरफ से साफ सुथरा रखेंगे, गंद को हटा देंगे, तो मच्छर ही पैदा नहीं होंगे। यदि मच्छर पैदा नहीं हुए तो नेचुरली मच्छर से होने वाली बीमारी ही नहीं होगी हमको। तो ये हम लोग एक प्रिवेंशन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इसमें हर एक आदमी का योगदान जरूरी होता है।
0: जी, सोलिसिटर्स डॉक्टर साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है कि जब हम साथ मिलकर चलेंगे, सब ये ठान लें कि हमें गंदगी को दूर रखना है, साफ सफाई का ख्याल रखना है। मुझे लगता है कि स्वच्छता अभियान की वजह से लोगों के दिल दिमाग में ये बातें बैठी हुई हैं कि साफ सफाई बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि साफ सफाई नहीं होगी तो डेंगू से आप परेशान हो सकते हैं, जहां जल भराव है वहां पर मच्छर आएंगे, मच्छरों की वजह से मलेरिया के आप शिकार हो सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में शामिल करें कि हमें बीमारियां अपने आसपास नहीं फटकने देनी है, जल भराव इकट्ठा नहीं होने देना है, ताकि आप डेंगू और मलेरिया या डायरिया कई प्रकार की बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं।

0: डॉक्टर साहब बात आती है कि साफ सफाई बहुत जरूरी है, हाथों की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है, और क्योंकि अगर इंसान हाथ की साफ सफाई का ख्याल नहीं रखता है तो जाने अनजाने में वो कुछ ऐसा खा लेता है क्योंकि उसने हाथ की सफाई की नहीं है। अगर हाथ की सफाई करता है तो कई प्रकार की बीमारियों से वो अपने आप को बचा कर रख सकता है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल सही बोला है आपने कि भाई आजू बाजू की सफाई के अलावा भी हमें अपने आप की भी तो सफाई करनी चाहिए। अपने आप की सफाई नहीं करोगे तो हम कहीं बीमारियों से, चर्म रोगों से अपने आप को पीड़ित कर सकते हैं। तो हमें ये प्रिवेंशन भी तो लेना चाहिए कि हम अपने आप को साफ सफाई रखें, हाथों को सफाई रखें और मास्क रखें। और जैसा अभी तो ये डेंगू के सीजन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेंगू का मच्छर है ये अच्छे पानी में पैदा होता, गंद पानी में नहीं होता। जैसा कि अपने घर में गमले हैं, गमले में आप पानी डालते हो, गमले में 7 दिन तक यदि पानी नहीं बदला तो वहाँ डेंगू मच्छर पैदा हो जाएगा। और जैसे टायर है, छत पे टायर रख देते हैं तो टायर को अपन देखते नहीं है तो उस पानी तो बिल्कुल साफ सुथरा होता है, गंद वाला नहीं है, उसमें भी डेंगू मच्छर पैदा होते हैं। रोड में है, रोड में छोटे छोटे गड्ढे हो गए और ज्यादा रहवाट नहीं है तो वो स्वच्छ पानी है, उसमें भी डेंगू मच्छर पैदा होता है। तो ऐसे समय में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हर 5 दिन में गमले का पानी बदल देना चाहिए। रोड में यदि छोटे छोटे गड्ढे तो उसमें मिट्टी डाल दो या कुछ पत्थर डाल दो या कुछ ईंटें बोल्डर डाल दो, और टायर वगैरह है तो टायर को निकालो, उसका पानी साफ कर लो, घर की गंदगी कबाड़ी को दे दो। तो ये सब चीज करने से डेंगू का प्रभाव और जो बचाव बहुत आराम से हो सकता है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसी में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये स्वच्छ भारत अभियान निकाला, अरविंद केजरीवाल ने भी सफाई अभियान के बारे में और डेंगू के बारे में जो मैंने बताया अभी कि भाई गमले का पानी बदल लो, उसमें केरोसिन डाल दो, कूलर का पानी बदल दो उसमें केरोसिन डाल दो, ताकि बच्चे हमारे डेंगू मच्छर पैदा ही ना हो।
0: जी,
1: मच्छर पैदा ही नहीं हुआ तो काटेगा कैसे
0: बीमारी?
1: हाँ, मलेरिया का जो है वो रात को काटता है, वो गंद पानी में तैयार होता है। इसलिए बाहर की भी सफाई और अंदर की भी सफाई बहुत जरूरी है ताकि मच्छर पैदा ही ना हो, पैदा होंगे तो काटेंगे। और उसके लिए फिर हमें गवर्नमेंट का भी सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि आप अकेले इतना तो कर नहीं पाओगे, आप अपना घर आजू बाजू थोड़ा देखोगे। कम्युनिटी को यदि देखना है तो कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सरकार की भी सहायता लेना पड़ेगा। तो इन मच्छरों को पैदा न होने के लिए, और यदि पैदा हो गए तो उनको लार्वे को मारने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट करेगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखे चलना पड़ेगा।
0: क्या बात है लिसनर्स, इस बात से एक बात तो मुझे भी समझ में आ गई कि जहाँ जल भराव होता है, गंदा पानी होता है, वहाँ पर मच्छर पैदा होता है और जिसकी वजह से मलेरिया की बीमारी फैलती है। और जहाँ अगर साफ पानी इकट्ठा है, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बातें बताई कि गमले का पानी है, किसी टायर में पानी भरा हुआ है, तो जो कि 2-3 दिन रोज का भी है, जो कि गंदा नहीं है लेकिन साफ है, उसको भी आप पानी को चेंज कर दें, फैला दें, ताकि डेंगू का मच्छर वहाँ पनप ना पाए और तमाम इस तरीके से अपने आप को बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं। सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये जन भागीदारी का एक अहम खास कार्यक्रम है जिसमें कि आपको भी कुछ करना होगा, मुझे भी कुछ करना होगा। जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से अस्पतालों में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ योजनाएं चल रही होती हैं जो कि धरातल पर भी यूं कहें कि अपनी जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है।

0: अब सवाल ये आता है कि जाहिर सी बात है कि बड़े लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, या यूं कहें कि कभी कभी साफ सफाई का ध्यान रखते हुए भी वो नादानी कर जाते हैं, भूल जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं। सवाल ये होता है कि बच्चे किस तरीके से अपनी साफ सफाई का ख्याल रखें, या अभिभावक अपने बच्चों का किस तरीके से साफ सफाई का ख्याल रखें ताकि बीमारियों से उनको हम बचा कर रख सकें।
1: देखो, बच्चा तो हमारा फ्यूचर है और फ्यूचर को बनाने वाले हम ही लोग हैं, तो उनको बताना चाहिए हम लोगों ने कि भाई देखो, अपने आप की सफाई, अपने बाजू की सफाई, दोनों हमारे लिए जरूरी है। और तीसरी होती मन की सफाई, बट मन की सफाई के लिए उसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा बाद में। अभी हम लोग फोकस करते हैं कि बाहर की सफाई, घर के बाहर की, रोड की सफाई, नाले की सफाई, कचरे की सफाई, कचरे को बराबर जगह पे डालना है, कूड़े को अपना बराबर जगह पे डालना, उसकी जगह पे डालना है, रास्ते पे ना फेंकना है, ना गाय को अननेसेसरी देना है। जो हमारी प्रथा है कि गाय के पीछे पीछे जाके लगते हैं, उसको कुछ भी देती है, कुछ भी बेचारी खा लेती है, ये नहीं, प्रॉपर जगह पे उसको दे दो। उनका भोजन देना है तो अपने प्रॉपर जगह पे, फिर उसका इस्तेमाल प्रॉपरली होना चाहिए। दूसरी बात है कि हाथ की सफाई करना बहुत जरूरी है, हाथ धोना बहुत जरूरी है, खाने के पहले और खाने के बाद दोनों समय हाथ धोना चाहिए। क्योंकि खाने के पहले इसलिए लोग क्या करते हैं, आजकल सैनिटाइजर लगा लेते, उससे खा लेते, बट लेकिन मेरे हिसाब ये हो कि भी साबुन से आप धोए तो बेटर होगा, बेहतर होगा, वहाँ की सैनिटाइजर से आप हाथ धोए। दूसरी बात है कि भाई अपने, अभी भी मैं बोलूंगा कि मास्क लगाया करो, फोटो मास्क भी लगाया करो और अपने नाक पे मास्क भी लगाया करो, और नाक में पूरा नाक और मुंह दोनों ढकना चाहिए। ये नहीं कि लोग आजकल मुंह पे लगा लेते और नाक पूरा खाली रहता है, शो के लिए लगाते, वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी तरफ से बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेटा पूरा जो है आपके हाथ में चॉकलेट का जो पॉकेट बचा है छोटा सा, तो उसको प्रॉपरली डस्टबिन में डालें, सेग्रीगेशन करें गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, ताकि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जो है वो अपने हिसाब से प्रॉपरली डिस्पोज हो। तीसरी बात, हाथ की सफाई करनी चाहिए, अपने आप को बराबर रखना चाहिए, जूते बाहर रखना चाहिए, आपने किचन में जूते नहीं ले जाना चाहिए, चप्पल नहीं ले जाना चाहिए अननेसेसरली, उससे क्या होता है कि अननेसेसरली डस्ट चला जाता है और अपना भोजन अनहाइजीन टाइप हो जाता है। किचन की बिल्कुल प्रॉपर सफाई रखनी चाहिए, बाथरूम की प्रॉपर सफाई रखनी चाहिए, ये बच्चों को अभी से हमको बताना चाहिए।

0: सर आपने यहाँ एक सवाल पैदा कर दिया है कि साफ सफाई की जो बातें बताई वाकई बहुत अच्छी तरीके से बेसिक बातें बताई हैं। ये तो रही घर की बात, क्योंकि अस्पताल एक ऐसा एरिया होता है कि जहाँ दूसरा तीसरा व्यक्ति मरीज है, या अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उस टॉयलेट को यूज कर रहा है जो कि कॉमन है, जहाँ हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो अस्पताल में किन किन चीजों का ख्याल रखे व्यक्ति, ताकि वो जो एक बीमार व्यक्ति है वो साफ सफाई रखे तो अपने आप को बचा सके, और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो अपने आप को कैसे बचा कर रख सके।
1: जो भी आदमी हॉस्पिटल में आता है वो बिल्कुल अपने खुशी से नहीं आता, उसकी मजबूरी होती है, उसको जरूरी होता है, इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती होता है। इस समय में हॉस्पिटल एक टेम्पररी घर है, जिसको होम बोलते हैं, टेम्पररी होम मरीज के लिए। तो टेम्पररी होम में रखने की वजह से जैसा वो अपने घर में बाकी चीजों की ख्यालत रखता है, बाकी चीजों का ख्याल रखता है, उसी हिसाब से उन्होंने हॉस्पिटल का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि भाई सपोज उसने फ्रूट खा लिया, तो फ्रूट का जो टर्फल है, जो छिलटा है, वो बराबर अपनी जगह पे उसने डिस्पोज कर देना चाहिए, प्रॉपर थैली में डिस्पोज कर देना चाहिए, कूड़ादान में डिस्पोज करना चाहिए, और इसी से उसको हमें सहयोग मिलेगा। वॉशरूम में जाएगा तो वॉशरूम में ही उसने यूरिनेशन करना है या लैट्रिन करना है, तो उसके ही इसमें करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। तो ये उसने यदि ध्यान दिया, हम लोग आजकल क्या करते हैं कि प्रॉपरली नल का भी सेंसर भी लगा दिया हम लोगों ने कि पानी वेस्ट ना हो, तो उतना ही पानी मिलेगा। दूसरी बात, हमने सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर भी रखा है, साबुन भी रखा है। तो जैसा मैंने बोला, खाने के पहले और खाने के बाद लाइक दिस, उसका जब भी पेशाब जाएगा या लैट्रिन जाएगा तो लैट्रिन के बाद में उसको हैंड वॉश करना जरूरी है। इसका जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है हॉस्पिटल का, उसको हम बोलेंगे कि तू प्रॉपरली जगह पे रखा कर, ताकि हमारा जो वार्ड बॉय आएगा या हाउसकीपिंग आएगा उसको एक सहायता मिलेगी उसकी वजह से। तो इसमें हॉस्पिटल की सफाई रखने में हमें काफी मदद मिलेगी।
0: सो लिसनर्स, वाकई डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कह दी, एक जन संदेश दे दिया कि इस आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, चाहे वो घर की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, या पब्लिक प्लेस की बात क्यों ना हो, तो मुझे लगता है कि एक स्वच्छ वातावरण आप दे पाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपना योगदान देश में

0: डॉक्टर साहब एक बात ये आती है, अमूमन होता क्या है कि जो एक पालतू जानवर है, जैसे कि हमने अभी बात की गाय की बात की, हम बात करते हैं कुत्तों की बात कर लेते हैं, इतना लगाव हो जाता है कि आप खाना खा रहे हैं और कुत्ता आपके पास बैठा हुआ है, उसको आप सहरा रहे हैं, या हो सकता है कि वो पालतू जानवर बीमार है और जो कि आपके संपर्क में आ गया तो आपको भी बीमारी लग गई। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि पालतू जानवर अगर है तो उसकी साफ सफाई कैसे करें और उसके संपर्क में आ रहे हैं तो उस बीमारी से हम कैसे अपने आप को बचा करें?
1: बिल्कुल आपने सही बात बोला, लोग अंधे हो जा रहे हैं। अब मेरा कहना ये है कि भाई आप जानवरों से प्यार ना करो, ऐसा मेरा बोलना नहीं है। आप जानवरों को बिल्कुल प्यार करो, वो भी इसके सहभागी है। हमने प्राणी मात्रा पर दया रखना चाहिए, प्राणी मात्रा के ऊपर प्रेम करना चाहिए
0: जी।
1: बट यदि आप खाना खा रहे हैं और उसी समय कुत्ता आता है, आप उसको एक हाथ से सहला रहे हो दूसरे हाथ से खाना खा रहे हो, ये बात को मैं कतई योग्य नहीं मानता हूँ। उसको उस समय प्रॉपरली जब आप खाना खाओगे तो आप कुत्ते को प्रॉपरली गाइडेंस दे दीजिए। यदि खुला है तो, बांधा हुआ तो बात अच्छा है, वो आएगा नहीं। यदि खुला कुत्ता है तो उसको बोलना चाहिए कि जब तक खाना नहीं होता तू बैठ जा, खाना होने के बाद जब यदि आएगा तो उसके आप सहला हो, सहलाने के बाद में प्रॉपरली हाथ धो, क्योंकि कुत्ते से भी हमें बीमारी मिलती है। एचनाना इकाइनोकॉकस ग्रैंडुलोसिस नाम की एक बीमारी होती है, लिवर में आइडेटिस सिस्ट होता, ब्रेन में एक न्यूरोसिस्टिस कोशिश होते है, ये बीमारी कुत्तों से होती है। हमें यदि प्रॉपरली आप ध्यान रखोगे, उसको वैक्सीनेशन रखोगे, वैक्सीनेशन इसलिए कि उस कुत्तों से कुत्ता यदि काट दिया और वैक्सीनेटेड नहीं है तो हमें रेबीज भी हो सकता है, चाहे वो पालतू क्यों ना हो, हमें कुछ पता नहीं होता है, तो कैरियर भी हो सकता है रेबीज का। तो ऐसे समय में हम अपनी तरफ के प्यार करना एक बात अलग है,
0: अपनी जिम्मेदारी,
1: अपनी जिम्मेदारी निभाना भी एक अलग बात
0: क्या है। सो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर आप पशु प्रेमी हैं, जाहिर सी बात है कि वो बेजुबान होते हैं लेकिन प्यार की भाषा को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आप उनसे जरूर प्रेम रखें, लेकिन आपको अपनी काया से भी बहुत प्यार रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जाने अनजाने में अगर कोई बीमारी उसको लगी हुई है और आपको ट्रांसफर हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं तक ये बातें पहुंचाई। हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता इस जानकारी को सुनेंगे, समझेंगे और अमल में जरूर लेकर आएंगे। वैसे देखा जाए तो आपने बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी ही बातें, लेकिन चूंकि कार्यक्रम को यहाँ मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, तो एक कोई जन संदेश जो आप कहना चाहते हो हमारे श्रोताओं से?
1: मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा, अपनी वजह से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपने घर का कूड़ा दसवीं माले पे यदि आदमी है तो धड़ से नीचे फेंक देते
0: हैं। जी जी,
1: ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली कूड़े को अपनी जगह पे रखो, कूड़ादान में रखो, और ये कूड़ादान में रखने के बाद उसको उठाने वाला जो आएगा उसको तकलीफ नहीं होगी, वो आराम से उसको उठा लेगा। बाजू के घर के बगल में डाल दे तो उस बाजू वाले को भी परेशानी है, दो चार बातें वो आपको सुनाएगा। तो ऐसे अवॉइड करने के लिए एक अपने आप को डिसिप्लिन करो, साफ सुथरी जगह पे रहते हो तो साफ सुथरी जगह रखो, और इसी को बीमारी में प्रिवेंशन करने के लिए सरकार को मदद करो।
0: क्या सो लिसनर्स, कहने का मतलब यही है कि अगर बात का निचोड़ निकाला जाए, साफ सफाई जीवन का अहम खास हिस्सा है, इसको अपनाकर चलिए, बीमारियों से अपने आप को बचाकर चलिए, और स्वच्छता अभियान जो चल रहा है इसमें कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम देश में अपना योगदान दे रहे होंगे। ये चर्चा आपको कैसे लगी? 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो श्रोता 90.8 FM। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: किसान मित्रों, आप सुन रहे सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है। इसका पूरा नुकसान हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से किसान भाइयों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जो इस प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हमारे किसान भाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर हमारे किसान भाई अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्य फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन और बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए हमारे किसान भाई अपने नजदीकी बैंक में जाकर के अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बस बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर उनकी फसल का बीमा हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारे किसी भी किसान भाई के पास पहले से किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। और अब किसान मित्रों, बात करेंगे कि बीमा करवाने के बाद अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आपकी फसल नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो उसका मुआवजा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी।
1: मैं मामा सकुनी ना समझा क्यों,

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी। और अब आप जानना चाहते हैं कि अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाती है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए आपको सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। साथ ही आपको अपनी जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आवेदन करने के कुछ दिनों बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी आपके खेत का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करते हैं और जब सब कुछ सही पाया जाता है तो किसान भाई के बैंक अकाउंट में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। तो इस तरह से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बलराम बैसला से ये रागनी। अब बात करते हैं FPO की, यानी कि किसान उत्पादन संगठन की, जो किसानों द्वारा बनाई गई एक सामूहिक संस्था है, जिसका उद्देश्य बाजार में किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। ये एक पंजीकृत कानूनी संस्था है जो कृषि उत्पादों के सामूहिक एकत्रीकरण, इनपुट की थोक खरीद, बाजार तक सीधी पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से किसानों को अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने में मदद करती है। हमारे सीमांत और छोटे और भूमिहीन किसानों को FPO के रूप में एकत्रित करने से बाजार संपर्क बढ़ाने में मदद मिली है, जिससे हमारे किसानों की आय और आर्थिक मजबूती में सुधार हुआ है। ये संगठन छोटे किसानों को संपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करते हैं, साथ ही विपणन, तकनीकी सेवाएं, प्रसंस्करण और खेती के अन्य पहलुओं को कवर करते हैं। FPO छोटे किसानों को एक साथ जोड़ते हैं और एक कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होते हैं। वो अपने सदस्यों की उपज को इकट्ठा करते हैं और सामूहिक रूप से बाजार में बेचते हैं। ये संगठन कृषि आदानों की थोक खरीद करता है, साथ ही ये संगठन हमारे किसान भाइयों को ऋण, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना किसान उत्पादन संगठन यानी FPO के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे योगेंद्र निमचाना से ये उपदेश। किसान मित्रों, खेत से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच करवाना बहुत जरूरी है। मिट्टी की जांच का मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के हिसाब से उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे कि उत्पादन बढ़े और साथ ही खेती में आने वाली लागत कम हो। किसान मित्रों, मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय समय पर मिट्टी की जांच कराई जाए। स्वस्थ शरीर के लिए जिस तरह सही खान पान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, उनकी अच्छी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। और इन पोषक तत्वों के बारे में हमें तभी पता चलता है जब हम अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं। उसी से ये बात सामने आती है कि हमारे खेत की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है या फिर किन की अधिकता है, उसी के हिसाब से खेत में खाद का प्रबंधन किया जाता है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि खेत से भरपूर पैदावार के लिए मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागना।

सुनील चौहान और उनके साथियों द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: कहते
1: तेरी सेहत कड़ा पड़ी से बता,
0: तेरी कसम से इसका ठिकाना नहीं, तेरे इंतजार का था।
1: अच्छा आज राज्य
0: जल्दी में कैसे पल पल भारी हो रही है
1: तेरे मन के,
0: तेरे प्यार का तलबगार हूँ।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में. आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें. जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा. जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा. जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है. बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में. बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है. आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं. दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे. बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है. अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं. हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं. आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी. बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में. ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है. जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे. पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है. आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं. अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स. माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए. अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है. अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है. बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में. हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स. माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए. जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे. हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए. बात करते हैं सम्मान की. सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स. छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए. ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है. एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है. बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की. इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है. बच्चों को यह पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है. इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है. ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं. यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, RJ बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी. यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in.
2: साथियों, रंजों में रंगे।

लेकिन 30 दिन से भूखा था, अन्न का ग्रास नहीं किया था, घड़ा सामर्थ्यहीन शरीर से नीचे गिर गया। दोस्तों कालिया को पता लगी कि हरिश्चंद्र ने तेरा सोने का कलश तोड़ दिया। मेहरबानों गुस्से में आ गया और हरिश्चंद्र के गात में ठोकर मारी। हाय भगवान, परमात्मा, मुझे तू इतना क्यों सता रहा है? एक राजगद्दी पर बैठने वाले राजा को

बानो हैरान रह गया। तन बदन में एक दुख का तूफान उमड़ आया। हाय परमात्मा, मैंने क्या कर दिया, एक गरीब को सता दिया। मेहरबानो, शमशान की ड्यूटी बदल दी हरिश्चंद की। आज शमशान पर हरिश्चंद पहरा दे रहा है कर वसूल करने के लिए। मेहरबानो, उधर होली का त्योहार आ लिया। रामलाल पंडित जी

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है और लोगों से अपील करता है कि हम सबको मिलकर महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। यही एक वजह है कि स्मार्ट के सौजन्य से हम लोग मिलकर एक महिलाओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, या यूं कहें कि जागरूकता वाला कार्यक्रम हम आपके बीच पहुंचा रहे हैं। आज विषय है लैंगिक हिंसा। इस संबंध में बहुत सारी जानकारी हमारे पास हैं, तो धीरे धीरे शनि शनि ये जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी संबंध में आज हम चैप्टर 2 पर पहुंच चुके हैं, जिसका टाइटल है किशोर और लैंगिक हिंसा के बारे में आंकड़े हमें क्या दर्शाते हैं, आंकड़े दरअसल हमसे कहते क्या है। तो इसी संबंध में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत में लगभग 240 मिलियन किशोर जिनकी उम्र है 10 से लेकर 19 वर्ष, जो यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग है। किशोर की प्रगति और बेहतरी के मुख्य संकेत ये इशारा करते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिनका समाधान किया जाना अति आवश्यक है। इनमें से कुछ संकेतों में लैंगिक विसंगतियां गंभीर हैं, जनगणना के आंकड़े बच्चों के लिंगानुपात और जिनकी उम्र है 0 से लेकर 6 वर्ष उसमें सतत गिरावट दर्शाते हैं। और वहीं 2001 में प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियों की तुलना में 2011 में 914 लड़कियां रह गईं। इसके अलावा जन्म के एक महीने के बाद की अवधि में कन्याओं की मृत्यु जो है वो बहुत ज्यादा दर्ज की गई। अधिकांश देशों में जहां शिशु तथा बाल मृत्यु केवल जैविक रूप से चालित है, वहीं जन्म के प्रथम महीने के पश्चात पहले वर्ष के दौरान बालिकाओं की मृत्यु पुरुषों की मृत्यु की अपेक्षा कम है। हालांकि भारत में प्रसव पश्चात नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित प्रसवों पर 1 से लेकर 11 महीने आयु वाले बच्चों में मौतों की संख्या बालिकाओं के लिए 21 है, जबकि बालकों के लिए केवल 15 है। इसके अलावा उच्चतम संपत्ति वर्ग में माताओं से जन्म लेने वाले बच्चों के मामलों में प्रसव और उसके पश्चात नवजात मृत्यु में बालिका बालक अंतर सबसे कम है, लेकिन बालिकाओं की प्रतिकूल परिस्थिति समस्त संपत्ति वर्गों में प्रमाणित है। बाल मृत्यु दर जो कि 1 वर्ष आयु तक पहुंचने वाले प्रति 1000 बच्चों के सापेक्ष 1 से 4 वर्ष आयु वाले बच्चों में मौतों की संख्या, उसमें भी लैंगिक अंतरों का यही पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलता है। और समग्र रूप की अगर हम बात करें तो समग्र रूप में भारत में प्रति 1000 पर 23 के रूप में बालिकाओं की मृत्यु दर, प्रति 1000 पर 14 के रूप में बालकों की मृत्यु दर से 61% अधिक है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु में विवाहित हो जाने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगातार बहुत अधिक बना हुआ है। और समग्र रूप से 47.4% या प्रत्येक दो में से एक महिला बालिका वधु थी। सिर्फ आंकड़ों की जब हम बात कर रहे हैं तो आंकड़ों में भारत में 20 से 24 वर्ष आयु समूह की कुल महिलाओं यानी कि 2000 की जनगणना पर आधारित ये बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, उसमें से 23 मिलियन से अधिक बालिका वधु पाई गई। लड़कियों के शीघ्र विवाह के परिणाम बहुआयामी होते हैं, जिनमें शीघ्र गर्भधारण, पोषण में कमी का अंतर, पीढ़ीगत हस्तांतरण, शिक्षा तथा आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सीमित अवसर आदि शामिल है, जिनसे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ये इशारा करने वाले साक्ष्य भी बढ़ रहे हैं कि 18 वर्ष से पूर्व विवाहित हो जाने वाली लड़कियों द्वारा घरेलू हिंसा का सामना किए जाने की संभावनाएं देर से विवाह वाली उनकी समकक्ष महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होती है। शीघ्र विवाह के हानिकारक कुप्रभावों की अगर हम बात करें तो उसके चलते इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शीघ्र विवाह भारत में प्रति लाख जीवित प्रसवों पर 200 मौतों के ऊंचे मातृत्व मृत्यु अनुपात यानी MMR का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, जो कि विश्व में एक सर्वाधिक आंकड़ा है। यदि लड़कियां जीवित भी बच जाती हैं तो उनके कुपोषित रहने की संभावना अधिक रहती है। 15 से 19 वर्ष की आयु की अधिक लड़कियां कुपोषित हैं। पूर्ण टीकाकरण के आंकड़ों से भी लैंगिक अंतर परिलक्षित होता है। जहां लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का पूर्ण टीकाकरण कराए जाने की संभावना कम रहती है, वहां वास्तव में NFHS1 और NFHS3 के दरमियान पूर्ण टीकाकरण के बारे में संकलित NFHS आंकड़ों से पता चलता है कि लैंगिक अंतराल न केवल बना रहता है बल्कि समय के साथ ये बढ़ता चला जाता है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। आप कहीं जाएगा मत, हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए एक विशेष कार्यक्रम लैंगिक हिंसा के संबंध में एक खास जानकारी, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: देखो रामा ने गाना शुरू कर दिया, अब सारे बच्चों की भूख भाग जाएगी।

एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। हम बात कर रहे हैं महिलाओं पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम के बारे में, और इसी संबंध में आज का जो विषय है लैंगिक हिंसा। इसी के अंतर्गत अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बालिकाओं को समान स्पर्धा क्षेत्र उपलब्ध कराने, साथ ही उनके उत्तरवर्ती सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण एक प्रमुख क्षेत्र शिक्षा, जो कि शिक्षा हम सबके लिए वाकई बहुत जरूरी है। लड़कियों का माध्यमिक स्कूल नामांकन में भी लैंगिक असमानता स्पष्ट देखने को मिलती है। स्कूल वर्ष की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2006 में 6 से 17 आयु के 71% बच्चे स्कूलों में थे, नगरीय क्षेत्रों में 77% और ग्रामीण क्षेत्रों में 69%। हालांकि 6 से 17 वर्ष की केवल 66% लड़कियां स्कूलों में थी, जबकि इसी आयु वर्ग के लड़कों का प्रतिशत 75% था। 2005 से लेकर 2006 स्कूल वर्ष में स्कूल जाने वाले 6 से 17 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर 889 लड़कियों के रूप में था। वास्तव में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिंगानुपात में गिरावट दिखती है, और ये 6 से 10 आयु समूह में 957 से 11 से लेकर 14 आयु समूह में 884 और फिर 15 से लेकर 17 आयु समूह में केवल 717 तक पहुंच जाता है। हालांकि 15 से लेकर 17 आयु समूह के बच्चों में स्कूलों की उपस्थिति के आंकड़े जो हैं लड़कियों और लड़कों दोनों के मामले में कम है, लेकिन इस आयु में लड़कों की तुलना में स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि बहुत अधिक है। हालांकि आयु के आधार पर स्कूल उपस्थिति के आंकड़ों का एक परीक्षण ये प्रकट करता है कि स्कूल उपस्थिति में लैंगिक असमानता व्यापक रूप से एक ग्रामीण परिघटना है। शहरी क्षेत्रों की मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक आयु वर्ग में स्कूल जाने वाले लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है लगभग समान है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल उपस्थिति में लैंगिक असमानता प्रत्येक आयु वर्ग में परिलक्षित होती है, और ये आयु बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती है। शहरी क्षेत्रों में 15 से लेकर 17 आयु वर्ग के केवल लगभग आधे बच्चे ही स्कूल जाते हैं, जिनमें लड़कियां लड़कों से कम है। अब बात ये सामने आती है कि देश में बड़ी तादाद में महिलाओं के लिए घूमने फिरने यानी कि आवाजाही की स्वतंत्रता में गंभीर कटौती की जाती है। हालांकि युवा किशोरियों के मामले में प्रतिबंध बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि बहुत कठोर है। लड़कियों के मामले में ये काफी मायने रखता है, क्योंकि आवागमन में वृद्धि महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रमुख संकेतक है। कुल मिलाकर यूं कहें कि 15 से लेकर 49 आयु समूह की केवल 1/3 महिलाओं को ही अकेले बाजार जाने, स्वास्थ्य केंद्र पर जाने और समुदाय से बाहर जाने की इजाजत यानी कि अनुमति मिल पाती है, और इसके विपरीत युवा महिलाओं के मामलों में ये प्रतिशत और भी कम।

0: हो जाता है, जहां 15 से लेकर 19 आयु वर्ग की केवल 12.8% महिलाओं को ही 3 स्थानों पर जाने की अनुमति होती है, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जबकि 20 से लेकर 29 वर्ष की महिलाओं के लिए 28% है। आयु के अलावा वैवाहिक स्थिति भी एक खास चर्चा का विषय है। युवा और सर्वदा अविवाहित महिलाओं को आवाजाही की सबसे कम आजादी होती है, या यूं कहें स्वतंत्रता होती है। जिनकी उम्र 40 तक पहुंच जाती है, उन महिलाओं में भी केवल लगभग आधी महिलाओं को ही इन तीनों स्थानों पर अकेले जाने की अनुमति होती है, जिसके बारे में हम यहां आपसे बात कर रहे हैं। जबकि लड़कों के लिए रोजगार प्राप्त करने या किसी अन्य के लिए कार्य करने की संभावना लड़कियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है। रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि घरेलू हिंसा के पीड़ितों द्वारा कई प्रकार के विपरीत जनसांख्यिकीय, प्रजनन संबंधी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों का अनुभव करने की संभावना पर बहुत प्रबल प्रभाव पड़ता है। हिंसा से स्वतंत्रता न केवल स्वयं में स्वास्थ्य लक्ष्य है, बल्कि ये महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति के लिए भी महत्वपूर्ण है। और खास बात यह कि ये व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि 28% युवा महिलाओं द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया जाना पाया जाता है। और बात सामने ये भी आती है कि शारीरिक और यौन हिंसा का दायरा शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा है, और हर प्रकार की हिंसा का प्रचलन किशोर की तुलना में अधिक आयु के युवा लोगों में, साथ ही कभी कभी विवाहित न होने वाले लोगों की तुलना में कभी विवाहित महिलाओं में अधिक है। और आंकड़े कहते हैं कि ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अधिकांश घरेलू हिंसा पतियों द्वारा उनकी पत्नियों के विरुद्ध की जाती है। कुल मिलाकर कभी विवाहित 37% युवा महिलाओं ने अपने जीवन साथी की ओर से शारीरिक, यौन या यूं कहें कि भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया है। इसके अलावा किशोर के लिए स्वास्थ्य चुनौतियों में प्रजनन मार्ग संक्रमण यानी RTI, साथ ही HIV सहित यौन संचारित संक्रमण शामिल है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 से लेकर 19 आयु समूह में केवल 18.6% महिलाओं, साथ ही साथ 34.5% पुरुषों को ही HIV एड्स के बारे में पूरी जानकारी थी। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है। स्मार्ट की सौजन्य से आप सुन रहे हैं एक खास जानकारी महिलाओं के ऊपर, और विषय है लैंगिक हिंसा। इसी के संबंध में जो आंकड़े हमें बता रहे हैं वो आंकड़े मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला लगातार जारी है, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: रंगे

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ स्मार्ट के सौजन्य से महिलाओं पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का जो विषय है लैंगिक हिंसा। इसी संबंध में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें और भी होना बाकी है, और इसी संबंध में आंकड़े क्या कहते हैं वो आंकड़े मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब बात आगे बढ़ती है तो बात सामने आती है कि भारत में किशोर वय की आयु के अनुसार स्तरीकृत आंकड़ों का अभाव है। पॉपुलेशन काउंसिल द्वारा भारत में 10 से लेकर 19 वर्ष आयु के किशोर वय की जरूरतों के बारे में एक हालिया साक्ष्य डेस्क सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 10 से लेकर 14 वर्ष आयु के अपेक्षाकृत छोटे किशोर वय के बारे में शिक्षा को छोड़कर अन्य विषयों पर प्रकाशित साक्ष्य बहुत कम है, या यूं कहें कि नहीं है। इसके अलावा अधिकांश उपलब्ध साक्ष्य युवाओं को 15 से 24 आयु वर्ग श्रेणी में रखकर बनाए गए और आयु स्त्रीकृत आंकड़े की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है। साथ ही 10 से लेकर 19 आयु वर्ग के किशोर वय के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, जबकि ये विशेष प्रकार के शारीरिक साथ ही भावनात्मक परिवर्तनों के कारण बहुत महत्वपूर्ण आयु समूह होता है। बात सामने आती है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध। इसी संबंध में बात निकलकर ये आ रही है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रिपोर्टिंग भारतीय दंड संहिता तथा विशेष और स्थानीय कानून, इसी में बात निकलकर ये आई है कि 2012 की तुलना में 2013 में 26.7% की वृद्धि दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश, जहां देश की महिलाओं की जनसंख्या का 7.3% भाग है, उसकी 2013 में अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध किए गए कुल अपराधों में से उसकी 10.5% की हिस्सेदारी रही है। और वहीं 2013 में महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों की दर 52.2 थी। वर्ष 2013 के दौरान दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा अपराध हुए, जहां की 52.2 की राष्ट्रीय अपराध दर के मुकाबले 146.0 की दर रही। और याद रखने लायक जो बिंदु हैं, जो खास बातें वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग किशोर वय का होने के कारण इसे जननांकीय के रूप में लाभप्रद स्थिति में कहा जाता है, लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण लैंगिक असमानताएं मौजूद हैं जिनका समाधान किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, या यूं कहें कि अति आवश्यक है। दूसरी बात, बालिकाएं और किशोरियां जीवन के सभी स्तरों पर विशेष रूप से वंचित हैं। घटता लिंगानुपात, स्कूलों में कम उपस्थिति, आवाजाही पर प्रतिबंध, रोजगार के अपेक्षाकृत कम अवसर, साथ ही यौन हिंसा के प्रति असुरक्षा। अगला पॉइंट है, 2013 में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराधों की संख्या में 26.7% की बढ़ोतरी पाई गई, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली में अपराधों की दर सबसे अधिक पाई गई। तो इन बातों का, इन आंकड़ों का यहाँ आपसे डिस्कस करने का मतलब मकसद यही है कि हम अगर इसी तरीके से चलते रहे और यूं ही आंकड़े बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं जो अनुपात है वो अभी भी गड़बड़ाया हुआ है और कहीं ज्यादा ना गड़बड़ाया जाए। इसलिए लड़कियों को शिक्षा के लिए बाहर निकलना चाहिए। जिस तरीके से आजादी की बात होती है हम सब के लिए, तो महिलाओं की भी बात होनी चाहिए, बच्चों की भी बात होनी चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि जिस तरीके से अभिभावक अपने बच्चों पर नजर रखते हैं उनके बारे में जानना समझना जरूरी है कि आप कहाँ थे, कैसे थे, और आप हमें बताकर जाएं, हमसे आप कुछ ना छुपाएं। तो ये बातें घर की हैं, या यूं कहें कि संस्कारों की बातें, जो कि अगर आप अपने माता पिता से साझा कर जाएंगे तो वो भी निश्चिंत रहेंगे और आपके बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं होंगे। हाँ, मेरा बच्चा वहां मुझे बताकर गया है, मेरी बच्ची वहां मुझे बताकर गई है। तो हमारा और आपका भी फर्ज बनता है कि हम अपने अभिभावकों को भी बताकर चलें, उनको साथ लेकर चलें कि हम कहाँ हैं, यानी कि आजादी का आप और हम गलत फायदा भी ना उठाएं।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
1: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, राग रस बरसे इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है रागों के संक्षिप्त परिचय सहित रागों की स्वर मालिका और स्वर मालिका पर आधारित रचनाओं के आदर्श गायन को प्रस्तुत करती श्रृंखला राग रस बरसी। इस श्रृंखला में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा रचित रागों की स्वर मालिकाओं का समावेश किया गया है। आइए संगीत की इस यात्रा में हम सब शामिल हो जाएं। प्रस्तुत है श्रृंखला राग रस बरसी।

राग भैरवी। राग भैरवी की उत्पत्ति भैरवी थाट से ही हुई है, अतः इस राग को भैरवी थाट का आश्रय राग कहा जाता है। इस राग की एक विशेषता ये भी है कि इस राग में सप्तक के कुल चारों कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी। अन्य शेष तीनों स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसकी आरोह और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग होने के कारण इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है और संवादी स्वर षडज यानी सा है। ये अत्यंत ही लोकप्रिय राग है। इस राग में छोटा ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा आदि गाई बजाई जाती हैं। इस राग का गायन समय प्रातःकाल है। राग भैरवी के आरोह, अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। प्रस्तुत है राग भैरवी का आरोह।

अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं राग भैरवी की स्वर मालिका, जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग भैरवी की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग भैरवी की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, भोर भई चल गुरु दर्शन को। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई

अभी आपने राग भैरवी की स्वर मालिका सुनी, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। अध्यापकों और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे इस प्रस्तुति

निर्माण दाऊदयाल चतुर्वेदी, निर्माण रमेश रानी शर्मा तथा विषय समन्वय काव्य रचना निवेदन एवं कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर।

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
0: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
1: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे, देख लो दो महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं, HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

धारावाहिक धरती मेरी धरती की 23वीं कड़ी धरती का अमृत। श्रोताओ, पिछले भाग में आपने जाना कि हमारी पृथ्वी का आधा भाग लगभग हर समय बादलों से घिरा रहता है। बादलों को उनके आकार और ऊंचाई के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। धरती पर कोहरा कैसे बनता है और कितने प्रकार का होता है, तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 23वीं कड़ी धरती का।

0: मुझे भी नहाना है और आधे घंटे से नहा रहे तू।
1: अरे सृष्टि, मानव की तो आदत ही हो गई है पानी व्यर्थ बहाने की। अकेला इतने पानी से नहाता है जितने में चार आदमी नहा ले। मानव बाहर निकलना,
0: पानी की कमी चल रही है और ये मानव है कि समझता ही नहीं।
2: अरे सुनो सुनो सुनो, तुम सब मानव के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे आराम से नहाने दो उसे।
0: हाँ अभी मानव की तरफ तारी करने लग गए।
2: अरे बेटा
0: आपको मानव को समझाना चाहिए ना कि पानी इतना बर्बाद ना किया।
1: और वैसे भी अब नल में रोज पानी नहीं आता,
0: और जिस दिन नल में पानी आता है उस दिन भी पानी इतना कहाँ आता है कि हमारी सभी पानी की जरूरतें पूरी हो सके।
3: वो तो विवेक भैया है कि चौराहे वाले नलकूप से पानी लाकर जमा करते रहते हैं, वरना मानव इसको तो नहाने का तो छोड़ो मुंह धोने का भी पानी ना मिले।
1: पर सृष्टि, अब चौराहे वाले हैंडपंप में पानी काफी कम हो गया है, अब कैसे होगा?
0: तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी।
2: अरे वसुधा, वैसे भी हर साल इन दिनों में पानी की कमी हो ही जाती है।
3: पापा क्यों ना हम अपने यहाँ ट्यूबवेल लगवा लें।
0: हाँ बिल्कुल, अब तो ट्यूबवेल लगवाना ही होगा।
3: अरे दीदी आप नहाने की बड़ी जल्दी मचा रही थी ना, आप जाओ ना नहाने के लिए, गप्पे क्यों लगा रही हो बैठी हुई यहाँ पर?
1: माना सृष्टि गप्पे नहीं लगा रही, वो तो बाथरूम से तेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी।
3: ओ, ये मानव तो नहाने में भी आधा घंटा लगाता है और नहाता भी है तो दो बाल्टी से। अरे दीदी मैं पानी फालतू थोड़ी बहाता हूँ, नहाने में दो बाल्टी तो लग ही जाती है।
2: बेटा देखो एक बात तो है, जब हम एक बाल्टी पानी से अच्छी तरह से नहा लेते हैं तो फिर तुझे दो बाल्टी पानी क्यों चाहिए?
3: अरे पापा मैं ये सब नहीं जानता, पर हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पानी बहाता नहीं बल्कि नहाने में उपयोग करता हूँ।
0: जो भी हो बेटा, पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपनी आदतों में परिवर्तन तो करना ही होगा ना।
3: वैसे मम्मी कितनी अजीब बात है ना कि धरती के 3/4 भाग पर पानी भरा है फिर भी मुझको सिर्फ एक बाल्टी पानी से नहाना पड़ेगा। लेकिन मानव तुम्हें पता है ना, धरती के सारे पानी का करीब 97.2% भाग खारा पानी है जो समुद्रों में जमा है। हाँ दीदी, लेकिन हमारे देश में कितनी सारी नदियाँ भी तो हैं।
0: लेकिन बेटा नदियों में भी कहाँ साल भर पानी रहता है बताओ तो।
2: वैसे भी भाई नदियाँ हमारे घर पानी देने थोड़े ही आ जाएंगे।
3: नदियाँ ना सही लेकिन हमारे यहाँ ट्यूबवेल तो लग ही सकता है। मानव तो बाथरूम में नहा रहा था, हमारी बातें सुन रहा था। दीदी वैसे मैं दोनों काम साथ साथ ही कर रहा हूँ।
0: इसलिए मानव तू ट्यूबवेल लगवाने की बात कर रहा है।
1: वैसे मम्मी साल के आधे दिनों में नल से पानी नहीं आता हो तो ट्यूबवेल तो लगवा ही लेना चाहिए।
3: मानव जब ट्यूबवेल लग जाएगा ना तो तुम दो बाल्टी की जगह 4 बाल्टी से नहाओगे।
2: बच्चों यही तो हमारी सोच में बदलाव की जरूरत है। देखो हमें किसी भी चीज को जरूरत से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक, हमें हमेशा अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए।
2: करें।
0: अच्छा तुम्हारी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन बताइए तो ट्यूबवेल वाली बात का क्या हुआ?
2: अरे वसुधा ट्यूबवेल तो जब कहो तब लग जाएगा। विवेक मुझे याद आया कि पिछले महीने तुम्हारे दोस्त वरुण के यहाँ ट्यूबवेल लगा था।
1: हाँ हाँ उसके यहाँ लगा था।
0: अरे विवेक तो फिर तुम उन बोरिंग वालों से बात कर लो ना।
1: अरे मम्मी बात करने को क्या कह रही हो, मैं उन्हें आज ही कर ले आता हूँ, मेरी उनसे अच्छी जान पहचान हो गई है।
2: तो विवेक मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा।
1: जी भी ठीक है।
3: मम्मी भैया आज बाजार जाएंगे ना तो आप मेरे लिए पिज्जा या नूडल्स मंगा लेना।
0: सुनिए जी ये आजकल घर का खाना कम और बाजार का अधिक खाना बता देती हूँ।
2: खाना तो मैं भी बाहर ही जाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, वैसे पकाना तो मैं भी नहीं चाहती, बाहर से लिया।
2: अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। बेटा मानव एक बात तो है कि घर का खाना ही शरीर को स्वस्थ रखता है, बाहर का खाना जितना कम हो उतना अच्छा। वसुधा मेरा लंच
0: किचन में रखा है। सृष्टि जा तो बेटा लंच लेकर आ। पापा का
2: अच्छा विवेक रोम चलते हैं।
1: जी जी
2: ओके वसुधा मिल हम
0: चलते हैं।
3: दीदी विवेक भैया के साथ राजीव अंकल भी है।
0: नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप?
4: बस ठीक है। भाभी जी विवेक बता रहा था कि आप भी ट्यूबवेल लगवाना चाहती हैं।
0: हाँ भाई साहब क्या करें, आजकल पानी की बड़ी किल्लत हो गई है।
4: ओ क्या है भाभी जी, अपना शहर ही नहीं बल्कि इस समय तो देश के अधिकतर क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।
3: लेकिन अंकल हमारे देश में तो इतनी नदियाँ तालाब झीलें हैं फिर भी पानी की समस्या क्यों है?
4: देखो बेटे गर्मी के आते आते अधिकतर नदियों, तालाबों जैसे सतही जल स्रोतों में पानी सूख जाता है।
3: हाँ अंकल, गर्मियों में तो पानी के लिए ट्यूबवेल पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
0: इसीलिए हम चाहते हैं कि घर पर जब ट्यूबवेल लग जाएगा तो पानी की चिंता ही नहीं रहेगी।
4: हाँ वो तो है भाभी जी, घर पर ट्यूबवेल होने से जब चाहे तब पानी भर सकते हैं।
1: अगर पानी निकल आए तो।
3: निकलेगा क्यों नहीं, जमीन के नीचे सब जगह पानी ही तो है।
4: देखो बेटे, नलकूप में पानी निकलना उस स्थान के भूजल स्तर पर निर्भर करता है और आज लगभग सभी जगहों पर भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है।
0: बच्चों तुम अंकल से बातें करो, तब तक मैं तुम लोग के लिए ठंडा लेकर आती हूँ, ठीक है?
3: ठीक है मम्मा। अंकल हमारे इलाके में तो भूजल स्तर अच्छा ही होगा ना?
1: मानव तुझे पता नहीं, अपने चौराहे वाली नलकूप में पानी का स्तर कम हो गया है।
3: क्या जल स्तर कम हो गया है? धरती में तो बहुत जल है, फिर धरती से ये जल कम कैसे हो गया?
0: धरती के समस्त जल की मात्रा का 0.78% भाग भूगर्भ जल के रूप में है।
4: हाँ, भूगर्भ जल की मात्रा पृथ्वी की समस्त जल राशि का 1% से भी कम है।
1: और पृथ्वी पर भूगर्भ जल का स्तर सभी जगह समान नहीं है।
3: तो क्या जमीन में नीचे सब जगह पानी नहीं है?
1: मानव किसी भी स्थान पर भूगर्भ जल का स्तर इस तथ्य पर निर्भर है कि उस स्थान की संरचना कैसी है।
4: हाँ मानव, भू जल स्तर उस क्षेत्र में पाए जाने वाली चट्टानों के प्रकार व मिट्टी पर निर्भर करता है।
0: तो मिट्टी की अधिक जल धारण की प्रवृत्ति भू जल स्तर को बढ़ाती है ना अंकल?
4: हाँ बेटी, मिट्टी की नमी धारण की क्षमता जितनी अधिक होगी वहाँ भूमिगत जल स्तर उतना ही अच्छा होगा।
3: अच्छा, तो भूमिगत जल का स्तर किसी जगह की मिट्टी की भौतिक व रासायनिक संरचना पर निर्भर करता है।
1: बिल्कुल ठीक मानव, साथ ही उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा पर भी।
3: मतलब भैया अच्छी वर्षा होगी तो भूजल स्तर भी बढ़ेगा, पर तब जब बारिश का पानी वहीं पर रोक ना लिया जाए, है ना?
1: बिल्कुल ठीक।
3: फिर तो रेगिस्तान जैसे क्षेत्र जहाँ वर्षा बहुत कम होती है वहाँ तो भूगर्भ जल स्तर बहुत कम होगा।
4: हाँ मानव, लेकिन रेगिस्तानों में भी कहीं कहीं भूमिगत जल मिलता है जो कहीं कहीं सतह पर जलाशय का निर्माण भी करता है। ऐसे क्षेत्र नखलिस्तान या ओएसिस कहलाते हैं।
3: अंकल हमारे देश में तो वर्षा का वितरण एक जैसा नहीं है, कहीं तो बहुत वर्षा होती है और कहीं बहुत कम।
4: हाँ बेटी, ये सही है कि भारत में सभी जगह समान वर्षा नहीं होती।
1: और अंकल जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ भी तो भूमिगत जल स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि बारिश का कितना पानी धरती में पहुँचा।
4: हाँ बात तो सही है।
3: अच्छा, तो बारिश का जितना अधिक पानी धरती में रिस कर पहुँचेगा भूमिगत जल स्तर उतना ही बढ़ेगा। सही समझे मानो तुम?
0: अरे बच्चों अंकल को परेशान तो नहीं कर रहे हो तुम लोग?
4: अरे नहीं नहीं भाभी जी, बल्कि ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं।
0: अरे भाई साहब, इनकी तो आदत ही है बातें करने की।
3: और मम्मी की आदत है हमारे खाने पीने का ख्याल रखने की।
0: और आज सभी के लिए मैंने सत्तू का शरबत बनाया है।
3: सत्तू का शरबत? मम्मी मुझे तो सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है, क्या वो मिलेगा?
1: मानव तुम्हें तो सॉफ्ट ड्रिंक और फास्ट फूड के अलावा कुछ और पसंद भी है।
4: भाई मानव, ये सॉफ्ट ड्रिंक और फास्ट फूड इसकी आदत सेहत के लिए अच्छी नहीं है भाई।
0: सही कहा भाई साहब आपने, फास्ट फूड से शरीर का संतुलित विकास भी कहाँ हो पाता है।
3: शायद मानव को ये बात समझ ही लेनी चाहिए।
1: अंकल मानव तो एक दिन समझ ही जाएगा। आप ये बताइए हमारे यहाँ ट्यूबवेल कब लग रहा है?
4: भाई विवेक, अभी 10 दिन तो हमारी बोरवेल मशीन फ्री नहीं है। हाँ उसके बाद तुम्हारा ट्यूबवेल जरूर लग जाएगा।
3: 10 दिन बाद?
4: हाँ?
3: अंकल तो क्या आपकी बोर मशीन पहले से ही बुक है?
4: भाई मानव, गर्मी के दिन आते आते ही ट्यूबवेल लगवाने वालों की संख्या बढ़ जाती है।
3: और करे भी क्या, पानी तो सभी को चाहिए ही।
0: हाँ? हाँ, नहीं तो क्या, जब सतही जल स्रोत सूख जाते हैं तो सभी भूमिगत जल स्रोत पर आश्रित हो जाते हैं।
1: और अंकल अकेले हमारे देश में ही ट्यूबवेलों की संख्या का आंकड़ा लाखों में है।
3: इतने ट्यूबवेलों से तो धरती का सीना छन्नी छन्नी हो गया होगा।
4: हाँ, और फिर पानी तो सभी को चाहिए, है ना? बच्चों जब सतही जल स्रोत से पर्याप्त और शुद्ध जल पानी नहीं मिलेगा तो मानव कहाँ जाएगा?
3: अंकल मानव कहीं नहीं जाएगा, वो तो यही रहेगा और 4 बाल्टियों से ही नहाता रहेगा।
1: फिर पीछे पड़ गई उसके। राजीव अंकल अपने मानव की नहीं बल्कि सभी मानवों यानी इंसानों की बात कर रहे हैं, है ना?
4: बिल्कुल ठीक विवेक, मेरे कहने का मतलब यही था।
0: अच्छा भाई साहब, ये तो बताइए कि ट्यूबवेल में करीब कितना पैसा खर्चा होगा?
1: अंकल वरुण के यहाँ जो हुआ उसके आसपास ही पैसा खर्च होगा, है ना?
4: शायद आपके यहाँ खर्च कुछ अधिक आया।
3: क्यों अंकल?
4: बेटे इस क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर निरंतर नीचे जा रहा है।
3: ओ, अच्छा अंकल।
4: हाँ बेटे, मैंने इस साल जितने भी नलकूप लगाए हैं सब में करीब 400 फीट से नीचे ही ठीक ठीक पानी निकला है।
3: 400 फीट नीचे?
4: हाँ, और ये जल स्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है।
3: लेकिन अंकल मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भूगर्भ जल स्तर इतना कम क्यों होता जा रहा है।
4: देखो बेटे, अब जमीन से भूजल निकालने की मात्रा प्राकृतिक रिसाव से अधिक हो गई है।
3: अंकल ये प्राकृतिक रिसाव क्या होता है?
1: अंकल आप ही समझा दीजिए।
4: मानो लाखों करोड़ों वर्षों से बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर उतरता रहा है।
1: अंकल लाखों वर्ष पूर्व जमीन में उतरा पानी फॉसिल वाटर यानी जीवाश्म जल कहलाता है ना?
4: हाँ, बारिश या अन्य स्रोतों से पानी धरती की सतह से जमीन में रिसता रहता है। ये पानी जमीन के अंदर उपस्थित चट्टानों के बीच के रिक्त स्थान में जमा होता रहता है
1: और मानव यही कहानी भूजल निर्माण की है, समझे?
3: तब तो अब धरती के अंदर पानी ही पानी हो गया होगा।
4: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मानव। इन चट्टानों में पानी को धारण करने की अपनी एक निश्चित सीमा होती है, पर जब इन चट्टानों के बीच की जगह पानी से लबालब भर जाती है तो पानी का ये स्तर उस स्थान का ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल स्तर कहलाता है।
3: तो अंकल इन दिनों भूजल स्तर की क्या हालत है?
4: मानव इस समय भूगर्भ जल के स्तर में भारी कमी आ रही है।
1: और जानते हो मानव, दक्षिण भारत में तो प्रतिवर्ष भूमिगत जल स्तर में 25 फीट की गिरावट हो रही है।
3: लेकिन हमारे देश में तो पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, फिर भी भूमिगत जल स्तर बढ़ता क्यों नहीं?
1: मानव पर्याप्त बारिश वाले क्षेत्र ही नहीं बल्कि जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उन इलाकों में भी भूजल स्तर में कमी देखी गई है।
3: ऐसा क्यों?
4: बेटे केवल अच्छी बारिश होने से ही भूमिगत जल नहीं बढ़ता।
0: हाँ, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए जल की पर्याप्त मात्रा धरती के भीतर पहुंचनी भी चाहिए।
1: और ये तभी संभव है कि बारिश के पानी को बहने ना दिया जाए, उसे वहीं रोक लिया जाए जहाँ पानी बरसता है।
3: और इसके लिए धरती पर पर्याप्त हरियाली का होना भी आवश्यक है। तो क्या पहले प्राकृतिक हिसाब से भूमि में जल की पर्याप्त मात्रा पहुंचती थी?
1: बिल्कुल मानव, पहले जनसंख्या कम थी, जंगल अधिक थे
4: और अब तो हरियाली का नाम ही कहाँ बचा है। जहाँ देखो वहाँ कंक्रीट के जंगल ही नजर आते हैं।
3: कंक्रीट के जंगल?
0: अरे मानव, राजीव अंकल सीमेंट रेत से बने सड़कों मकानों की बात कर रहे हैं।
4: हाँ।
3: लेकिन कंक्रीट के जंगल से भूमि का जल का क्या संबंध?
4: देखो बेटे, सीमेंटीकरण से धरती पर गिरने वाली बारिश का पानी जमीन में नहीं रिस पाता
3: और इस प्रकार बारिश का अधिकतर पानी व्यर्थ बह जाता है। तो क्या हुआ, ये पानी नदियों नालों और तालाबों में तो पहुंच रही है।
1: मानव वर्षा का पानी सीधे नदियों नालों और तालाबों में अकेले नहीं पहुंचता, वो अपने साथ मिट्टी की बहुत सी मात्रा जल स्रोतों में जमा कर देता है, समझे?
0: मिट्टी की अधिक मात्रा से सतही जल स्रोतों की गहराई कम हो जाती है जिसके कारण ही अधिकतर जल स्रोतों में पानी नहीं जमा हो पाता और होता भी है तो बहुत कम।
4: हाँ, पहले तो झीलों तालाबों में जमा पानी रिसकर धरती में समाता रहता था।
3: अच्छा, तो यही कारण है कि पुराने समय में भूमि का जल स्तर अच्छा था।
0: अब से करीब 30-40 साल पहले मानव नदियों के किनारे बसे गांवों और शहरों में कुछ ही फीट खोदने पर जमीन से पानी निकल आता था, मालूम है?
4: और अब तो सैकड़ों फीट खोदने पर भी पानी का अता पता नहीं होता।
1: अंकल हमारे देश के कई राज्यों में

0: अब तक तो सतही जल स्रोतों को ही खतरा था, लेकिन अब तो भूमिगत जल स्तर पर भी खतरा मंडरा रहा है।
1: गिरते भूगर्भ जल स्तर से तो ऐसे ही संकेत मिलते हैं कि अब भूजल स्रोत भी मानवीय स्वार्थ की भेंट चढ़ जाएगा।
2: हाँ, मानव अपनी बढ़ती जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमिगत जल का भरपूर दोहन कर रहा है।
3: अंकल, मैंने सुना है अकेले यूरोप में 80% पेयजल की आपूर्ति भूजल से ही होती है।
2: हाँ, तो बच्चों में क्या बता रहा था कि भूमिगत जल का दोहन समय के साथ साथ बढ़ रहा है।
3: हाँ अंकल, विकासशील देशों में तो कुल जल की 80-85% मात्रा कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है।
1: अंकल, इसमें भूजल की मात्रा कितनी होती है?
2: बेटे, अकेले भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किए जल की आधी से अधिक मात्रा भूजल की होती है।
0: और हाँ बच्चों, विभिन्न कृषि फसलों में जल की खपत भी अलग अलग है।
2: और हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र में बोई जाने वाली गन्ने की फसल है, जो कुल भूमि के 2.5% भाग पर बोई जाती है, लेकिन इसके लिए कुल पानी का 60% भाग खप जाता है।
1: अच्छा,
4: तो इसका मतलब चीनी की मिठास में पानी की बहुत मात्रा खप जाती है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल। और जानते हो, जो तुम्हें ये सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है ना, उसकी एक छोटी बॉटल के निर्माण में भी करीब 3-4 लीटर पानी लग जाता है।
1: अच्छा भैया, सॉफ्ट ड्रिंक की एक बोतल के पीछे 30 बोतल बराबर पानी लग जाता है।
3: सृष्टि,
2: इतना ही नहीं, उद्योगों में कृषि में प्रयुक्त रसायनों से सतही जल के साथ ही अब तो भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है।
0: ठीक कहा भाई साहब आपने, तभी तो कभी कभी हमारे यहाँ नल में आने वाला पानी बदबूदार होता है।
1: अंकल, हमारे यहाँ लगने वाले ट्यूबवेल में तो साफ पानी आएगा ना?
2: हाँ, साफ पानी निकालने के लिए हमें धरती की अधिक गहराई से पानी निकालना होगा।
0: क्या भाई साहब, अधिक गहराई पर भूगर्भ जल क्या शुद्ध होता है?
2: हाँ, भूगर्भ की ऊपर जल की तुलना में अधिक गहराई का जल अधिक स्वच्छ होता है।
0: भाई साहब, लगता है आप हमारी ट्यूबवेल का बजट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं।
3: वैसे भी अंकल, अब तो कई जगह जो भूमिगत जल उपयोग किया जा रहा है वो तो हजारों लाखों वर्ष पुराना फॉसिल ग्राउंड वाटर है।
1: तो इसका मतलब हम धरती के जल भंडार को तीव्र गति से खाली कर रहे हैं।
3: मानव यही नहीं, भूजल के दोहन के साथ मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है।
2: हाँ मानव, जिस प्रकार से भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि भूमिगत जल भंडार खत्म होने में अधिक वर्ष नहीं लगेंगे।
0: सही कहा भाई साहब आपने, हमारे देश के अनेक भागों में भूमिगत जल में आर्सेनिक, नाइट्रेट और फ्लोराइड जैसे रसायनों की मात्रा बहुत बढ़ गई है।
3: और मम्मी, इस अशुद्ध जल के सेवन से करोड़ों लोग बीमारी का शिकार भी तो हो रहे हैं।
1: भैया, तो आदमी शुद्ध जल कहाँ से लाए? अधिकतर सतही जल तो प्रदूषित हो ही चुका है और अब तो भूमिगत जल भी शुद्ध नहीं रहा।
4: हाँ मानव, कभी अमृत समझे जाने वाला गंगा यमुना नदियों का ये जल पहले ही प्रदूषित हो चुका था, अब तो भूजल भी प्रदूषित हो गया है।
2: हाँ, मैं भाभी जी, पानी की बातें करते करते आप तो मुझे पानी पिलाना ही भूल गई।
0: मैं आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ, ठीक है?
1: मम्मी, हम सबके लिए भी लेते आना।
4: भला सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाला मानव नींबू पानी कब से पसंद करने लग गया?
1: आज सही दीदी, कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए।
2: शाबाश, परंपरागत शीतल पेय बाजार के सॉफ्ट ड्रिंक से लाख गुना बेहतर है।
3: और अंकल, भारत में तो जल संरक्षण की परंपरा प्राचीन समय से ही है, फिर भी भारत जैसे देश में पानी की समस्या गहरा रही है।
2: हाँ विवेक, हमारे देश में तो वर्षा जल संग्रहण की कई प्रणालियां प्रचलित थी, लेकिन विकास के नाम पर जल संरक्षण की परंपरागत प्रणालियों की उपेक्षा से जल संकट की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।
3: अंकल, हमारे देश के राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में तो वर्षा की बूंद बूंद को सहेजने की प्रथा थी।
0: शायद तभी बूंद बूंद जल से घड़ा भरने की कहावत बनी। लीजिए भाई साहब,
2: थैंक यू बाबू जी,
0: लो बेटा,
2: बहुत जरूरत थी इसे।
1: मम्मी, प्राचीन भारत के लोग जल की बूंद बूंद का बड़ी कुशलता से उपयोग किया करते।
2: बेटी, वर्तमान में भी हमारे देश में कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने पारंपरिक जल प्रणालियों को पुनः जीवित किया है।
1: अंकल, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग भी तो वर्षा जल संग्रहण के लिए स्थापित की जाने वाली प्रणाली है ना? हमारे स्कूल में भी ऐसा ही किया जा रहा है।
2: हाँ बेटे, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में सरकारी और निजी भवनों की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को संग्रह कर पाइपों द्वारा सीधे जमीन में उतारा जाता है।
1: मम्मी, तब तो हमें भी अपने घर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगवा ही लेनी चाहिए।
0: क्यों नहीं बेटा, भूमिगत जल स्तर में हमें भी तो अपना योगदान देना चाहिए।
2: हाँ भाभी जी, यदि भूमिगत व सतही जल दोनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए

0: काफी हद तक पानी की समस्या हल हो सकती है।
1: आज हम जितना पानी बचाएंगे कल वही पानी हमारे काम आएगा।
2: मतलब अब हमें भी पानी की गुल्लक बनानी पड़ेगी।
1: हाँ मालूम है, लेकिन हमारी पानी की गुल्लक ऐसी होगी जिसमें कोई भी पानी जमा कर सकेगा।
2: हमारे परंपरागत तालाब, कुएं, कुंडी, पोखरे, जोहर, झीलें भी कुछ ऐसी गुल्लकें थी जिनमें हम भूमिगत जल को सहेज कर रखते थे।
0: ठीक कहा सिस्टर तुमने, और आज इन जल संचयन प्रणालियों को आधुनिक तकनीक द्वारा और भी कुशल बनाए जाने की आवश्यकता है।
1: हाँ अंकल, गहराते जल संकट से निपटने के लिए हमें जल संग्रहण के तमाम तरीकों को अपनाना होगा।
2: मैं एक अच्छा तरीका बताऊँ भूजल स्तर को सुरक्षित रखने का?
0: हाँ
2: दीदी बताओ ना। मम्मी, मानव यदि नहाने के लिए दो के बजाय एक बाल्टी से ही काम चला ले तो भी जल की बहुत सी मात्रा सुरक्षित रह सकती है।
3: ये तो सही कहा सृष्टि तुमने, लेकिन तुम हमेशा मानव के पीछे क्यों पड़े रहते हो?
1: पर मानव, तुम्हारा क्या कहना है?
2: भैया, मैं अब नहाने में ही नहीं बल्कि सभी कार्यों में पानी को बर्बाद करूंगा। क्या? मेरा मतलब है कि नहीं करूंगा।
0: बहुत अच्छे बेटे, बस इसी प्रकार हर इंसान जल के संरक्षण के लिए प्रयासरत हो जाए तो फिर भूमिगत जल लाखों वर्षों तक जीवन को बनाए रखेगा।
1: अंकल, जब हमारा मानव जल की महत्ता समझ गया तो हमें विश्वास है कि एक दिन मानव यानी समाज भी प्रकृति के इस अनमोल उपहार को सहेजना सीख लेगा।
2: भैया, मेरा उपहार कहाँ है? पिज्जा, नूडल्स,
1: मानव।

धरती मेरी धरती। अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 23वीं कड़ी सुन रहे थे, धरती का अमृत।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: अकड़ी पकड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी

0: पार्टी ओवर गो।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा?
2: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी,
2: जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखेनी, ओकेरा के तुरंत साफ करेनी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आसपास कहूं भी टायर

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए

वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु साधन 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: सपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं. यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी. यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. You are listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: Beautiful songs, इंकलाबी जिद्दी from the movie गांधी टॉक्स, और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, वोकल्स श्रेया घोषाल, लिरिक्स कुमार, ऑल न्यू सुरुशादा 90.8 FM, इंकलाबी जिद्दी।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: आपने को गीत सुना मेरा? सुना है जी।

0: इतना बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो 10 या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम

कि अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: यानी गगन के साथ स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है।
1: टीबी और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरे। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.